नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी जलंधर दे एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। अज दिन बुधवारे शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने की 17 तारीख तदनुसार ईस्वी सन 2026 दे जुलाई महीने की अज 8 तारीख है। इस वेले सवेर के 5:58 ते 40 सैकेंड होए ने। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूं और बसी करण एक मंत्र है परे हरु बचन कठोर। संत तुलसीदास जी ने यह दस्या है कि जिहड़े साडे मिठे बोल ने उह साडे वल्लों हर पासे सुख फैला सकदे ने। इंसान दे मिठे बोल उन्हां दे विच इन्नी ताकत हुंदी है कि वह अपने मिठास भरे शब्दां दे नाल किसे दा भी मन अपने बस च कर सकता है। इसलिए इंसान नूं कठोर वचन छड़ के मिठा बोलण दा प्रयास ते कोशिश करदे रहना चाहिदा ते अनजाणियां नूं अपना बना लेना चाहिदा है।

कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस संसार दे विच इंसान जिहो जिहा कर्म करता है उनू ओदा दा ही फल मिलता है। इसलिए उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने कर्म नू सब तो ज्यादा महानता दिती है। ते साडे कर्म इदां दे होने चाहिए ने कि हर जीव नू साडे आस पास सुकून मिले, शांति मिले, ते साडे मन नू हमेशा परमात्मा दे नाम दी लगन लगी रवे।

सूरज खिलते फूल, ये प्यारा सा बहारों का मौसम लेके आया है एक पैगाम कि आज का दिन आपको ढेर सारी खुशियां दे। बस यही है मेरा आज का आपके लिए प्यार भरा पैगाम। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग पॉजिटिव हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। सो जी, वेंसडे मॉर्निंग है, बुधवार दी सवेर है। वो कहते हैं कि बुध कम शुद्ध होता है, बस इसी वजह करके मैं पता है कि लंबी छुट्टी तो बाद आ गई हाँ जी मैं आखिर तुहाड़े नाल ढेर सारिया गल्लां करन लई। वैसे तो आवाज़ पछाण लई होएगी, नहीं पछाणी तो आप हुण ही दस दिंदे आ। सो इस प्यारी जी खूबसूरत जी सवेर दे विच मैं अपनी तारीफ नहीं लगी सी करन, मैं तो बस खूबसूरत जी सवेर दी तारीफ करन दा सोचिया क्योंकि बड़ी देर बाद आई हाँ और बहुत ही रिफ्रेशिंग जहा फील हो रहा है। मैंने पता उठना बहुत औखा सी, अज बार बार मन कर रहा है थोड़ा जहा होर सोलवा थोड़ा जहा होर सोलवा, पर नहीं ना उठना पैंदा काम दे लई। और उस तो ज़्यादा ना एक्साइटमेंट तुहानू सौण नहीं दिंदी। वैसे राती थोड़ी जी नींद आ गई सी मैनू क्योंकि मैं रिलैक्सड सी ये सोच के कि फाइनली तुहाडे नाल गल्लां बातां ते मुलाकात दा मौका मिल रहा है। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस लंबी छुट्टी वाली मेरी ब्रेक। आर जी पूजा तुहानी यानी कि मैं माइक दे इस पार बैठी हुई हाँ जी तुहाड़ी एनर्जी दी पावर हाउस। थोड़ी जी एनर्जी कई बार बंदे दी अपनी लो हो सकती, लेकिन मेरी कोशिश ये होंगी है कि कोई गल नहीं, आप जिदा जिदा सफर च अगे बढ़ना है उदा उदा असी फ्यूल पाई जाना है एनर्जी का अपने अंदर, और उही फ्यूल मेरी कोशिश होंगी कि मैं तुहानू ट्रांसफर करा। तो 7:05 हो चुके हैं और टाइम हो चुका है जी तुहाड़े फेवरेट वाले शो का, जिस दे विच हुंदी है इनफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज, यानी कि टाइम हो गया है जी तुहाड़े फेवरेट वाले शो का गुड मॉर्निंग जलंधर दा। सो गुड मॉर्निंग जलंधर दी अज दे इस सफर तो इस पूजा तुहानी यानी कि मैं होंगी तुहाड़े नाल 8:30 तक चलेगा गुड मॉर्निंग जलंधर, यानी कि जलंधर तो मैं गुड मॉर्निंग करनी है लेकिन पहुँचते देशों विदेशों च रहा है। और 8:30 सुनोगे तुम खबर, हाँ जी 7:30 तुहानू अपडेट्स यानी कि हाईलाइट्स सुनाए जाएंगे विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2026 जो चल रहे ने 5 मिनट दे लई, उस बाद मेरी तो गल्लां बातें जारी रहनगियां। 8:30 खबर सुनने तो बाद 8:40 तो 9 बजे तक इंजॉय करेंगे आप दोनों ही रल के, मतलब मैं और तुसी सारे अड्डी टप्पा जिस विच पंजाबी बीट सॉन्ग्स मैं तुहाडे लई प्ले करूँगी और तुसी फुल ऑन इंजॉय करना है। 9 बजे न्यूज़ हेडलाइंस मेरे तो ही सुनने तो बाद अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे आप दिल अपना पंजाबी, जिस विच तुसी भी अपने व्हाट्सएप पर भेजे हुए प्यारे प्यारे मैसेज जिहड़े मैनू भेजूंगे वो मैं बिल्कुल लाइव सुनूंगी भी तुहानू सुनाऊंगी भी। सो कुल मिला के 10 बजे तक अपना अज का ये सफर चलेगा गल्लां बातों का इनफॉर्मेशन ते फुल ऑन एंटरटेनमेंट का। सो फिलहाल तुसी ट्यून करके बैठे हो मैनू 102.7 ते 103.6 ते प्यारे प्यारे लिसनर यानी कि आकाशवाणी अमृतसर वाले भी सानू इस फ्रीकुएंसी दे जरिए ट्यून करते ने, और इस फ्रीकुएंसी दे जरिए सरहद पार तो भी प्यारे प्यारे दोस्त ट्यून करते ने। तुहाडा भी तह दिलो बहुत बहुत शुक्रिया करदी हाँ जी, और हाँ जी हाँ जी तुहाडे वाल भी आ रही हाँ जो सानू न्यूज़ ऑन AIR ऐप दे जरिए सुन रहे ने फिलहाल। बिल्कुल लाइव देखो कितनी प्यारी जी स्माइल आ गई है चेहरे पे, हाँ जी तुहाडा भी ढेर सारा थैंक यू कर दिया जी जित्थों जित्थों भी तुसी सुन रहे हो। अ वेरी गुड मॉर्निंग रिफ्रेशिंग जी मॉर्निंग RJ पूजा वालों। सो टाइम हो गया है गुड मॉर्निंग जलंधर दा, सो गुड मॉर्निंग तो करनी ही है। फिलहाल बड़ी लंबी जी खामोशी आप तोड़ी है तो बड़े प्यारे जी सॉन्ग के नाल शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग जलंधर दा। हेयर कम्स द फर्स्ट ट्रैक, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन FM रेनबो।

जिसके कारण फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी सी, बहुत ही ज्यादा गरीबी वाला माहौल। तो कई बारी उन्हें आप दसन से पता चलता है कि उन्हें बेसिक जो जरूरत होंदिया ने रोजाना दिया वो भी पूरा करना मुश्किल हो जाता सी। पर उस मुंडे दे कोल एक चीज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी बई, ड्रीम्स, सुपने बहुत ज्यादा वड्डे सी। लेकिन उस तो ज्यादा वड्डा पता की सी, उन्हें दे कोल साहस, उन्हें सुपने नू पूरा करन दा जिगरा, वो हिम्मत उन्होंने अपने अंदर रखी। सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो अपने घर तो दूर अकैडमी ज्वाइन करने के लिए चले गए। छोटी उम्र घर की याद, बहुत सारे चैलेंजेस, लोनलीनेस, पर उन्होंने एक भी दिन अपने उस ड्रीम तो, उस सपने तो नज़र हटाई ही नहीं। लाइफ ने बहुत ज़्यादा टेस्ट इदा दे लए कि कोई भी आम इंसान होंदा तो कदों ना टुट के बिखर जाता, हार जाता। लेकिन 15 साल की उम्र के जो डॉक्टर्स ने यह कह दिता हो कि उसके दिल की प्रॉब्लम उसका फुटबॉल का करियर खत्म कर सकती है, तो सोचो उस मासूम जे बच्चे की बीती होगी। लेकिन चैंपियंस एक्सक्यूजेस नहीं, सोल्यूशनस लभदे ने, इस वजह करके चैंपियंस बनते हैं। सर्जरी हुई, रिकवरी हुई, फिर रोनाल्डो वापस ग्राउंड पर आ गए। सो अज इदा दी उन्होंने जिंदगी दे विच छोटी छोटिया गल्लां मैं तुहानू याद करवाउंदी रहूंगी, दसदी रहूंगी, मतलब खुद आप भी याद करती रहूंगी, तुहाडे नाल शेयर करती रहूंगी। और जिंदगी दे विच उन्हां दी इन्हां गल्लां तो बड़ा कुछ सीखते भी रहेंगे आपां। सो फिलहाल उन्हां दी गल्लां दे नाल नाल अगला ट्रैक

और 20 साल दी नियमित सेवा तुसी कर पाओगे। मैं गल कर रही सी एयरमैन ग्रुप वाई दे विच मेडिकल असिस्टेंट दे तौर ते अगर तुसी अप्लाई करना चाहते हो वायु सेना दे विच। और इसी चोन प्रक्रिया दे 3 पड़ा ने। ऑनलाइन लिखती परीक्षा होएगी अग्निवीर वायु दे लई, 60 मिनट का पेपर होएगा, 60 सवाल आउणगे तुहानूं रीजनिंग दे लई, मैथ साइंस अंग्रेजी दे लई रेडी रहना पएगा। मेडिकल असिस्टेंट दे लई पेपर होएगा 45 मिनट का, जिहदे विच 45 सवाल आउणगे अंग्रेजी रीजनिंग जनरल अवेयरनैस दे। और तुहानूं सैकेंड स्टैप दे विच जिहड़े तुहाडे डॉक्यूमेंट्स ने यानी कि तुहाडे दस्तावेज़ उन्हां दी वेरीफिकेशन करवाउणी जरूरी है और फिजिकल टैसट पास होना जरूरी है। मुंडिया दे लई 1.6 किलोमीटर 7 मिनट दे विच पूरा करना जरूरी है ते कुड़ियां दे लई 8 मिनट दे विच 1.6 किलोमीटर दी जिहड़ी ये दौड़ है वो पूरी करनी जरूरी है। पुशअप करवाए जाणगे, सिटअप्स करवाए जाणगे ते स्क्वैट्स भी करवाए जाणगे। इस तों इलावा मैडिकल प्रीख्या दे विच तुहाडा ब्लड टैसट, यूरिन टैसट, एक्सरे किया जाएगा, ECG होएगी और आई टैसट वगैरह वगैरह शामिल ने। सो जरूरी गल ये है कि अगर तुसी फॉर्म भरना चाहते हो तो इसकी फीस है 550 रुपए। ऑनलाइन अप्लाई ही होगा। ये मार्च 2027 दे विच ट्रेनिंग शुरू ते जून 2027 च पासिंग आउट परेड होएगी। फिर की तुसी अप्लाई करना चाहते हो? अगर हाँ तुहाडा ये सपना है तो बस अपने दिल की गल सुनो ते भारतीय वायु सेना दे विच तुसी भी शामिल हो सकते हो, कर सकते हो अपना सपना पूरा। और इस दिन वाली प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर विच टाइम हो गया है मेरी नहीं गाने की अगली गल सुनने का। सो स्टे ट्यून, सुनते हैं अगला गाना।

और हिम्मत नू उसने बरकरार रखिया। बहुत सारी जर्सियां बेशक वो बदलता गया, लेकिन सपना उदे एक ही सी, आंख उसकी बिल्कुल निशाने ते सी, लेकिन उस निशाने तक पहुंचण दे सफर दे विच उसनू करोड़ां लोकां दा प्यार मिलिया, सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी अणथक मेहनत दे वजह। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड तो जुवेंटस, फिर दोबारा मैनचेस्टर यूनाइटेड दे लई, ते फिर हुण अल नसर दे लई खेडणा। एक चीज जिहड़ी नहीं बदली ओ सी हिज हंगर टू बी बैटर दैन यस्टरडे, और ये उन्होंने कहा कि हुण भी जारी रहेगी उन्होंने ये जिहड़ी भुख है कि मैं खुद तो कल तो बेहतर बनना है, आने वाले कल दे विच हर रोज़ होर मेहनत करनी है और वधिया करना है, किसी होर लई नहीं अपने लिए। अपने आप दे नाल साडा कॉम्पीटिशन होना चाहिए, बाकियों दे नाल कॉम्पीटिशन करांगे तो कई बार वो नैगेटिव टर्न कर जाते, लेकिन खुद दे नाल जो कॉम्पीटिशन करते हैं तो सानू अपने आप तो होर ज़्यादा चीज़ा कई बार सीखने को मिलती ने और पता चलता है असी कित्थे कित्थे गलतियां कीतियां ने और किहड़ियां गलतियां किहड़ियां कमियां साडे च हैगियां ने और असी उन्हां नू कित्थे किस तरीके दे नाल सुधार सकते हैं। ये एटीट्यूड जिंदगी दे लई जरूरी है। पूजा टोहानी दे नाल गुड मॉर्निंग जलंधर।

0: लो जी, इस बहुत ही नाटी से सॉन्ग के बाद इस बहुत ही पैसे वाले और बढ़िया होर सारे ड्रीम्स नू लै के सानू सुपने दिखाउंदा होया सॉन्ग तो बाद तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। ट्यून कीता होया तुसीं तुहाडा आपना ते मेरा फेवरेट वाला रेडियो स्टेशन FM रेनबो 102.7 ते 103.6 ते और नाल दी नाल न्यूज ऑन AIR ऐप ते सुन रहे हो जी बिल्कुल लाइव। 8:02 हो चुके ने और टाइम हो गया है एज पर माई प्रोमिस आज दे खास मेहमान जी दे नाल गल्लां बातां करन दा। मतलब गलबात नहीं, आपां तुहानूं जिस मैं टॉपिक दी प्रोमिस कीती सी गल करके गई सी उन्हां नाल उस टॉपिक ते गल करांगे। लेकिन सब तो पहला स्वागत करदे हां जी अज दे खास मेहमान डॉक्टर नरेंद्र कौर जी दा। हैलो हैलो
1: हैलो
0: नमस्कार।

0: जी
1: अलावा
0: जी
1: मैम कुछ सेविंग्स नहीं, लाइक फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इट इज
0: जी
1: वेरी यू कैन से इंटरेस्टेड वन, एंड आई फील इट इज सेफेस्ट वन फॉर योर ओल्ड एज,
0: जी
1: बिकॉज इट्स न्योर इज 15 ईयर्स, एंड फर्दर इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर्स. फाइव मतलब एक बार 15 साल पूरे हो गए,
0: जी
1: अगे 5 साल एक बार एक्सटेंड कर लो, उस तो बाद फिर दोबारा 5 साल ली कर लो,
0: जी
1: तो ऑलमोस्ट इट इज 25 ईयर्स. तो मैम मैं तो अपने MBA, MCOM, BBA, BCOM दे स्टूडेंट्स नू भी हमेशा ही कहनी हाँ कि बेटा
0: जी
1: जिस दिन तुसी अर्निंग करन लग गए, कम से कम इस PPF दे विच 500 हजार रुपया तो मिनिमम साल दा पा ही सकते हो ना.
0: जी मैं तुहाड़े तो यही पुछन जा रही सी। पहली गल तो यही कि इन्हां दे विच फर्क की है, वह भी तुसी बहुत चंगी तरीके नाल दस दिता। तो उस तो
1: हाँ
0: बाद
1: जी
0: मैं ये पुछन जा रही सी कि जिहड़े नौजवान ने, महिलावां ने, या जिहड़े नौकरी
1: हाँ
0: पेशा या
1: जी
0: फिर सीनियर सिटीजन नागरिक ने, उन्हां नूं
1: हाँ जी
0: इन्हां बचत योजनावां च सब तो ज़्यादा जिहड़ा मतलब उचित कहड़ा, वह तुसी दस दिता कि
1: हाँ
0: सीनियर
1: जी
0: सिटीजन दे लई कहड़ा ठीक है ते महिलावां दे लई कहड़ा, ते अगर कोई स्टूडेंट ने तो वह किन्ना क या किस योजना दे विच अपना इन्वेस्ट कर
1: हाँ जी
0: सकते ने। ते
1: बिल्कुल
0: जे असी गल करिए सरकारी बचत योजनावां दे विच निवेश करन ते जिहड़ा सानू आमदन कर यानी कि इनकम टैक्स, ओहदे विच भी कोई छोट मिलदी है? जे हाँ ते किद्दां
1: हाँ जी
0: मिलदी
1: मैम
0: है, और ओह किहड़ियां स्कीम्स ने जिन्हां दे विच ज़्यादा सानू इनकम टैक्स मिल सकदा है सानू छोट?
1: ठीक है मैम. देखो मैम जिवें मैं हुणे तुहाडे नाल गल कीती है, सुकन्या समृद्धि योजना है, जिन्नी
0: इहदे
1: भी तुसी
0: विच
1: इस च 1,50,000 तक इन्वेस्ट करोगे,
0: जी इहदे विच
1: दैट
0: दस्सिया सी
1: इज 80C है, साडे एक्ट है, एक इनकम टैक्स दा सैक्शन है
0: जी
1: जिहदे अंडर ये थोड़ी इनकम दे विचों 1,50,000 सिद्धा लैस हो जांदा है
0: जी मैम
1: ना,
0: जी
1: एंड जो इससे थोनू इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल, थोनू कितने दिखाने की जरूरत नहीं है.
0: ओके
1: उसी तरह नाल जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, देखो जेड़ा सुकन्या है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, बट
0: जी
1: जो
0: जी जी
1: पब्लिक प्रोविडेंट फंड है दिस इज फॉर एवरी वन हू हैव
0: जी
1: अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स. तुसी अपने माइनर बच्चे लिए भी खुलवा सकते हो,
0: जी
1: जिवें बेटा है ओ लिए खुलवा लो ना, उस दे विच मंथली तुसी फिक्स कर सकते हो अमाउंट, जां तुसी साल दी जिन्नी क अफोर्ड कर सकते हो पा दो,
0: जी
1: मैक्सिमम 1,50,000 हुंदी है ये एक साल
0: जी
1: दी. और ATC दी एक लिमिट है बस, कि ATC दे विच तुसी वध तो वध 1,50,000 दी एग्जम्पशन लै सकते हो. तो जे तुसी इना सारे जुनी यानी कि इना अल्टरनेटिव दे विच थोड़ा थोड़ा भी पा दोगे, ना तुसी साल दे विच 1,50,000 बड़े आराम नाल सेव कर सकते हो, जिन्हों थोनू थोड़ी इनकम भी होएगी, इंटरेस्ट भी मिलेगा जिस तो, बट थोनू टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा
0: एक चीज़
1: और
0: होर
1: थोड़ी
0: दि
1: टोटल
0: जी
1: इनकम जो भी है माइनस होएगी अमाउंट.
0: जी इहदे
1: यस
0: नाल ही एक सवाल होर दिमाग दे विच आया मेरे मैम कि
1: हाँ जी
0: की एक व्यक्ति नूं अपनी सारी बचत एक ही योजना दे विच निवेश करनी चाहिए है, या फिर अलग अलग योजनावां दे विच वंड के मतलब है ना उस नूं निवेश करना वो वधिया रहेगा तुहाडे अकॉर्डिंग की ठीक
1: बिल्कुल
0: है?
1: मैम. देखो मैम जिवें मैं थोनू पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहा है ना, इन्हां चो तुसी इस तरह सौखा पैसा नहीं कढ़ा सकते, इन्हां दी एक लॉक इन पीरियड हुंदा है, मतलब जिवें
0: ओके
1: PPF दे विच तुसी कम से कम 4 साल 5 साल तक पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते,
0: जी
1: बट थोनू किसी वक्त भी एमरजेंसी दे विच पैसे दी लोड़ पै सकती है, मे बी
0: बिल्कुल
1: थोनू कोई हेल्थ इशू आ जाए,
0: जी
1: फैमिली च कोई मैरिज आ सकती है,
0: जी
1: और बच्चों की एजुकेशन.
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: हमेशा जेड़ा पैसा है उसनू डिवाइड करना चाहिए है, उनू वंड के पाना चाहिए है, ता जो लोड पे ते तुसी अपनी जरूरत के अनुसार उसनू यूज कर सको,
0: जी
1: है ना.
0: जी
1: तो कुछ ऐसी स्कीम्स ने जिन्हां चो तुसी इजीली पैसा नहीं विड्रॉ कर सकते, उन्हां
0: जी
1: दा मेन पर्पज है ही ये है कि तुसी लॉन्ग टर्म लिए उन्हां नू इन्वेस्ट करो, ते कदे अपने फ्यूचर दे विच जिवें बुढ़ापे दे विच कह लो, जां थोड़े बच्चों की मैरिज आती है अज तो 10-15 साल बाद, तुसी उन्हां चीजां नू उदों यूज कर सको, दैट इज फॉर द फ्यूचर पर्पज, है ना, भविख
0: जी
1: दी थोड़े भविख नू सुरक्षित कर रहा है.
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए जदों भी तुसी पैसे इन्वेस्ट करने ने सारे इको स्रोत च ना पाओ, यू शुड इन्वेस्ट इन यानी उन्होंने अलग अलग सोर्सेज दे विच अल्टरनेटिव च इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके कुछ FD करा दो,
0: जी
1: है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: कुछ PPF जरूर खुलवाओ, मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स नू भी, है ना. ते उस तो इलावा यानी एक बेटी है तो सुकन्या जरूर खुलवाओ, थोड़ा बहुत उस च भी इन्वेस्ट, यानी इस चीज नू डिवाइड कर लो
0: जी
1: एज पर योर इनकम, कि तुसी किन्ना क हर पासे थोड़ा थोड़ा करके पा सकते हो.
0: ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਮੈਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਨੇ?

लड़खड़ाते कदम हैं, पर जीतना मैदान बाकी है। शांत नहीं होया मैं, रगा मैं तूफान बाकी है। शेर का रुतबा नहीं घटता जब तक जान बाकी है। हारा नहीं हूं मैं, मेरे भीतर वो जीतन वाला इंसान बाकी है। इंसान बाकी है। मारे बड़े बूढ़े एक बात कया करते, जो रुक गया वो उक गया, और जिसने जीतन की ठान ली उसका आगे सारा जमाना झुक गया। आया जंग में, मैं आया जंग में, आया जंग में, मैं आया जंग में। मुक्केबाजियां हैं मेरे अंग अंग में।

वेलकम बैक आफ्टर दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग। सो टाइम ये कह रहा है कि हम प्रोग्राम नू आपा ऐथे ही वाइंड अप कर दें, लेकिन मैं जा किते नहीं रही।

सो म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स और बस देखो इसीलिए थी आज ने अजी तुहाडे लिए अलग अलग प्रोग्राम लेके जिस दे विच तुहाडी एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन गारंटी असीं दिंदे आ। टाइम हो चुका है 8:41 और ये टाइम है नॉन स्टॉप पंजाबी बीट सॉन्ग्स तुहाडे लिए मैं प्ले करूंगी इस दा यानी कि साडे खास सेगमेंट अड्डी टप्पा दा। ते चलो फिर मिलके शुरू कर दें सफर अड्डी टप्पा दा। ठीक 9 बजे तक चलता रहेगा ये अड्डी टप्पा दा सफर ते नाल दी नाल इंजॉय करते रहोंगे बैक टू बैक पंजाबी बीट सॉन्ग्स। आरजे पूजा टोहानी यानी कि मेरे नाल ओनली ऑन FM रेनबो।

0: क्या बात
1: बात
0: हो।
1: हो, वाह वाह वाह,
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग
1: गुड
0: मैडम
1: मॉर्निंग जी।
0: पूजा टोहानी जी, सत
1: जी
0: श्री अकाल
1: बहुत बहुत स्वागत है
0: जी।
1: जी ब्रांच।
0: बड़े दिनों बाद आए हो
1: देर
0: जी,
1: होगी।
0: स्वागत है जी।
1: थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी,
0: बड़े दिनों बाद आए हो,
1: हाँ
0: हाँ जी,
1: जी। लंबी
0: बड़े
1: ब्रेक
0: दिनों
1: होगी।
0: बाद आपकी आवाज आई। आप अकेले नहीं, साथ में बरसात लाई। हाँ
1: अरे
0: जी,
1: वाह,
0: तो
1: शुक्रिया जी
0: छोटी जी कविता ही
1: जी जी जी जी जी
0: सुनाना है। मौजू है जी दिल का दर्द। हाँ जी,
1: जी
0: फुल्ला जी हाँ कोमल दिल मेरा, ला ठोकर चली कीता है ना, समझे जान दुख सह लिया, असि कुट सबरां दा पीता है।
1: पीता है।
0: मन होया दिल दे दर्द नाल, मन रोया दिल दे दर्द नाल, अखां गिल्लियां ते मुंह सीता है।
1: सीता है।
0: मन सोच सोच के हार गया कि जुल्म असाने कीता है, सजा सी जा फुल कोई जा गुनाह सी कोई कीता है।
1: कीता है।

0: लंबी
1: बड़े
0: ब्रेक
1: दिनों
0: होगी।
1: बाद आपकी आवाज आई। आप अकेले नहीं, साथ में बरसात लाई। हाँ
0: अरे
1: जी,
0: वाह
1: तो
0: शुक्रिया जी।
1: छोटी जी कविता आई
0: जी।
1: सुनाने मौजूद है जी। दिल का दर्द, हाँ जी,
0: जी।
1: फुल्ला जी हाँ कोमल दिल मेरा, ला ठोकर चली कीता है ना, समझे जान दुख सह लिया, असि घुट सबरां दा पीता है।
0: पीता है।
1: मन होया दिल दे दर्द नाल, मन रोया दिल दे दर्द नाल, अखां गिल्लियां ते मुंह सीता है।
0: सीता है।
1: मन सोच सोच के हार गया कि जुल्म असाने कीता है, सजा सी जा फुल कोई जा गुनाह सी कोई कीता है।
0: कीता है।
1: जांसी वैर कोई जन्म दा, जो बदला आन अज लेता है। बन पहेली जही दर्द मेरा, मेरी सोच विच कर कीता है। एक दर्द ते दूजा सोच दर्द दी, सुरजीत अकलों कमला कीता है। ओ असे पागल कह कह के तिना दर्द असानू दिता है। मेरी पीड़ मैं ही जानदा, मेरी पीड़ मैं ही
0: मैं ही
1: जानदा है,
0: जानदा
1: जा जाने जी ने दुख पीता
0: दिता है,
1: है। हाँ
0: अच्छा
1: जी,
0: पीता
1: जा
0: है
1: जाने जी ने दुख
0: दित्ते
1: पीता है।
0: वाले
1: जी
0: ने कितने
1: आज
0: याद
1: इन्हें
0: है।
1: किया जी, कविता चंगी लगी तो जरूर शेयर करो। हाँ जी,
0: लव जी कर दी थी आप
1: हंसी
0: थोड़ी कविता शेर। और हाँ, देने वाले ने कुछ नहीं पता होंगे, तो जिन्हें पीता होंगे ना दर्द, वाकई सही किया बिल्कुल, तुसी पता उन्हें ही लगता है। चलो बहुत सोहनी कविता तुसी सांझी की थी, मेरी आवाज़ न मिस किया। लो जी, अज मैं ज्यों पांच तरबंदा तो अपनी आवाज़ सुना रही हूँ, मैं सुनाई जानी पी तो उम्मीद करती हूँ काफ़ी सोहनी लगी होगी तुसी मेरी आवाज़, जिन्होंने हुणी रेडियो सैट ऑन किया। बई तुसी तो रह गए घाटे वाले सौदे दे विच। ये सौदा खरा खरा हुंदा सवेर दे 5:53 तो शुरू, ते फिर जे सिर्फ 9 to 10 सुनते हो ते ऐप डाउनलोड करो न्यूज़ ऑन AIR, और बिल्कुल परफेक्ट टाइम ते ट्यून करा करो 5:55 ते साड़ी पहली अनाउंसमेंट दे नाल 10 बजे तक ये जरा सफर चलता है सवेर दा। पाली प्याला होशियारपुर तो लिख रहे ने, मेरे अंदर होना नहीं तेरे अंदर होना देख ली रब, जे ना मिलया बुत्तां चो जिंदगी ने सौखी लंघ जाना, सुख लभने सिख ली दुखां चो, किसे वेड़े दा ना अक बन जाई, कोई मेहने मारू कुखां चो, कम ऐसा कोई ना कर बैठी जो निकली धियां पुत्तां चो। ओहो हो, बहुत सोहनी गल, बहुत वधिया ते डूंगी गहराई वाली गल तुसीं कीती है, क्योंकि वाकई कहिंदे आ ना जिहड़े माँ बाप दे करम है वह बच्चों नूं भी भुगतने पैंदे ने। सो इस वजह करके करम इदां दे करो कि जदों कोई कहे ना कि कर्मां दा भुगतान होएगा ते वह बद्दुआ ना लगे, वह असीस लगे। चलो पाली प्यारा जी, बहुत सोहना तुसीं साडे नाल मैसेज सांझा कीता, ते इहदे नाल ही चलदे आ प्रोग्राम च अगले वॉइस मैसेज दे वल। हैं
1: पूजा मैम जी, तो
0: हाँ जी,
1: सानू ते इस परिवार नाल
0: हाँ
1: जुड़े
0: जी,
1: सारे दोस्तों नू जसवीर सिंह दुड़ा वालों प्यार भरी सत श्री अकाल।
0: बहुत बहुत स्वागत है
1: सो
0: जी।
1: पूजा जी, अज काफी दरवा हाजिरी लगाई है,
0: हाँ जी,
1: खैर चलो स्वागत है तुहाडा।
0: शुक्रिया जी, शुक्रिया।
1: मुझे कुछ शेयर कर रहा हां
0: हाँ जी, हाँ जी, करो।
1: कि आलमपुर के करीब मेरे ही नगर च सारे नगर और NRA वीरां दे सहयोग नाल फुटबॉल दे मैच चल रहे हैं।
0: अरे वाह,
1: सो जिला जलंधर और होशियारपुर जिले चो दूरों दूरों टीमां शिरकत कर रही हैं।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस।
1: सो गर्मियां दा मौसम देखते हुए मैच दा टाइम जो है 6 बजे तो 12 बजे तक रात दा रखा गया है,
0: ठीक है जी, बहुत चंगी गल है
1: जिते दूरों दूरों टीमां शामिल हो रही हैं।
0: जी,
1: लंगर पानी दा डॉक्टरी सहूलत पूरा इंतजाम किया गया है।
0: जी
1: सो चाहवान वीर लाइव भी देख सकते हैं।
0: ठीक है जी,
1: जेतू टीमां और अच्छे खिडारियों लिए उचित इनामों का भी इंतजाम किया गया है।
0: जी।
1: सो चाहवान वीर लाइव देख सकते, लाइव भी चल रहे हैं। सो हम गल करते हैं कि साढ़े इस परिवार ने जुड़े हुए साढ़े दोस्त, साड़ी छोटी भैन किरण नूरला जी, उन्होंने तो सैल्यूट है। साढ़े TM साहब सलाम रखड़ा जी, और जसवीर सिंह अरोड़ा जी, मंटू चंदेल जी, सारे दोस्तों सब नो मेरे वालों तह दिलों धन्यवाद और सत श्री अकाल। मैं जसवीर सिंह दुड़ा
0: वैसे मैं पूछना ये चाहुंदी कि उन्हां दा धन्नवाद कर के इस गल दे लई रहे हो, मैनूं समझ नहीं आई। देखो वो तो अपना मैसेज भेज के शामिल हो जाते हैं प्रोग्राम दे विच, है ना, सारे बहुत चंगे लिसनर ने, लेकिन मैं हमें

0: तू फुल ते मैं टाणी कोई ना खिल भी जावांगे बस तू अरदासा करया कर आपां मिल भी जावांगे आपां मिल भी जावांगे।
1: ज्यादा कम नूं ते मैं फटाफट प्रोग्राम खत्म करके मिल लेना है, तुसी चिंता ना करो। चलो कोई गल नहीं, आपां देखदे हां कि

सो म्यूजिकली आवाज आकाशवाणी एफएम रेनबो और 10:43 हो चुके हैं जी. रेनबो की घड़ी थे फिलहाल ट्यून इन किया हुआ तुम्हें बहुत सारे दोस्तों ने देखो सवेर का अज रेनबो ट्यून इन करके जी जर्नी है ना सोहनी जर्नी ब्यूटीफुल जर्नी कह लिए म्यूजिकली जर्नी कह लिए ऑलरेडी ट्यून इन करके इंजॉय कर रहे हैं. और अगला जो सफर है जी वह ड्राइवर हूँ चेंज हो गया है. सो 10:00 ही जी ट्रेन चलती है म्यूजिकल वाली है ड्राइवर चेंज हो जाता है नाल ही नाल स्टेशन के नाल बहुत सारे होर नवे नवे स्टेशन एड हो जाते हैं. सो 102.7 FM रेनबो फिलहाल सफर जारी है जी मेरे यानी रिचा दे नाल ते मेरे वालों सारे दोस्तों एक बार प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल आदाब है जनाब की हाल चाल है अज. सो मौसम का ही नहीं पता चल रहा की हाल चाल होने फिर सारे अपने आप ही मैंने पता है हाल चाल किवें हैं. सो इंजॉय करा जी मौसम भी इंजॉय.

0: कुछ अपनी जिंदगी में चल रहा है वो सारा कुछ
1: ओह
0: टाइम नहीं चल रहा था, फिर सारा कुछ फर्स्ट क्लास होना ही है। हुण आपां कल दे उत्ते छड्ड दईए है ना कि चलो जो भी कुछ रह गया है ना ते मैं कल आऊंगा ते उदों मैं सवेरे उठ के प्लान करांगा ये करांगा, तो थोड़ी जी चेंज कर देनी चाहिए यार। जेकर मैनू अज जरूरी कोई काम नहीं, अच्छा चलो मैं ये कह रही हां अज दे दिन च मैनू बहुत ज्यादा जरूरी कोई तीन काम ने ना, तीन काम फड़ लिए और उहदी लिस्ट बना लिए और एक दिन पहले ही उहदे बारे सोच लिए, थोड़ी जी प्लानिंग कर लिए ना, तां लाइफ भी फर्स्ट क्लास हो जांदी है और स्मूथली चल जांदा है सारा कुछ, है ना जी। सो बनाओ तुसीं भी अपनी लाइफ नू स्मूथ, और स्मूथी भी बना सकते हो वैसे सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट दे विच कर लिया तां ठीक है, नहीं कीता तां चलो एक मेरे कोलो सजेशन सीगी, स्मूथी बनाओ पियो खाओ, है ना जी, ऐश करो और एंजॉय करो अगला गीत ओनली ऑन 102.7 FM रेनबो ते, दिल से दिल।

को बरसात बना लो। एक्चुअली हेलो, बरसात कोई किसी को नहीं बना सकता, बरसात ऊपरों आ रही है, बनी बनाई है, की कह रहे हो तुसी, मतलब बरसात बना लो यार, भी कुछ होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। बट बेसिकली बरसात असी नहीं बना रहे, लेकिन बरसात के तो बहुत कुछ बना सकते हैं ना जी। घर किचन रखी है जी, बना रखी नहीं सोनी चीज़, जाओ जाओ जाओ जाके लिस्ट बना लो कि जो सोना जा अपना वर्गा, मतलब जो मौसम सानू पसंद है ना, मीह पएगा उदो आप की कुछ बनाना है घर के, है ना, समान होना चाहिए है। सो वो जी एक लिस्ट है ना, वो तुसी तैयार कर लो कि उस मौसम के पकौड़े खाने हैं, कीड़ी खानी है, तो चाह पीनी है, तो कीड़ी पीनी है ना जी। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बन सकते हैं, तो वो तुसी देखो। फिलहाल मैं देख रही हूँ अगला गीत, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार, ओनली ऑन 102.7 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

तो क्या बना कर लाए थे जनाब, और क्या बना कर ले जाएंगे। दुनिया तो देखो, कोई कुछ नहीं लेके आया है ना, और लेके भी किसी ने कुछ नाल नहीं जाना है। जो है इत्थे ही है, और जो कुछ भी हो रहा है ना, देखो साडे अखां दे सामने ही हो रहा है। तो इस करके उस हर एक पल ना इंजॉय करना सानू आना चाहिए, क्योंकि नाल वाकई किसी ने कुछ नहीं ले जाना है। इस करके कल दे लई सेव रखिए थोड़ा बहुत, लेकिन उस कल दे चक्कर च ना जिहड़ी अपनी अज है।

0: तेरे नाल दो कड़ियां ने असाने हस के जी परचौना ओ प्यार दिया दो गल्ला करके वेला लईए तक नी चुप करके चढ़ जा मित्रां दा चलिया ट्रक नी चुप करके चढ़ जा चुप करके चढ़ जा
1: चुप करके चढ़ जा ट्रक नहीं है। मैं कह रही हूँ जनानियां कोई काम चुप करके कर सकदियां ने ना ही जी रौला पै ही जांदा है। फिलहाल देखो रिचा भी इस टाइम स्टूडियो च बैठी हुई है, रौला पै हुआ है सारे पासे क्योंकि प्रोग्राम च फरमाइश होला के बहुत सारे दोस्त अज पहुंच रहे ने मेरे कोल। हेलो
2: रिचा जी, सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी।
2: BPO कोटली थान सिंह डिस्ट्रिक्ट जलंधर तो मिंटू चंदेल जी।
1: ओहो हो, आइए आइए, स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च।
2: अपने
1: आप लिखे सारे
2: नहीं नहीं नेट तो चक्के सी
1: पड़े गए अच्छा अच्छा देखो ये भी एक टैलेंट हुंदा है ना, एक शौक हुंदा है कि आपा शायरी लिख रहे हैं, वो भी एक कलेक्शन ही हुंदा है। देखो है तो कलेक्शन ही वैसे।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: ते सब तो वधिया तुहानू मतलब शायर केड़े लगदे ने, केड़ी शायरी मतलब अपनी पसंदीदा तुहानू लगदी है?
2: रिचा जी मेरे को एक बहुत अच्छा शेर है जो मैं अक्सर ही रेडियो पे और डेडिकेट करता हूं ना 102.7 नु। वो किस तरह नहीं है, किस तरह दी आवाज है, आवाज भी अलग ही होएगी।
1: अच्छा
2: और तुसी गेस करना केड़ी आवाज है।
1: अच्छा चलो कोशिश कर दिया जी।
2: वादा है आपकी दोस्ती खास रहेगी, यादों की झलक दिल के पास रहेगी, नहीं भूलेंगे आपको और आपकी दोस्ती को, मगर जब तक इस दिल में आखिरी सांस रहेगी।
1: बहुत वधिया। देखो स्टूडियो जो मैं ऑडियंस बिठा रखी है तुहाडे लई तालियां बजा रही है। देखा चलो मिंटू चंदेल जी बहुत सोहनी तुसी आवाज़ कड्ढी और धर्मेंद्र जी है ना उन्होंने कौन भुल सकता है। वाह जी वाह, बहुत सोहना। सो शायरी तुसी है लिखते रहो, कलैक्शन अपना होर भी ज़्यादा मैं कह रही हूँ बनाते रहो, शौक है तुहानू, बहुत वधिया लग्या। तो गीत कहड़ा सुनना है?
2: हाँ जी तुसी गाना सुना दिओ रिचा जी, गुरदास मान साहब दी आवाज़ विच टंगे रहिंदे
1: सिर्फ देखो तुसी मेरे नाल गल्लां बातां करदे हो इस प्रोग्राम च है ना जी पंजाबी तड़का, और अज तां बहुत खास टॉपिक भी मैं लेके आई हां जेकर तुसी भी हो कलेक्शन दे, देखो बहुत सारा कोई

0: Once again, welcome back. Aaj ye program chal raha hai Punjabi Tadka aur Richa tade naal judi hui hai aur agle dost kaun judke ne sade naal. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ji namaste madam ji, Richa madam ji.
0: Namaste ji.
1: Haan ji madam ji, tusi bahut badhiya program pesh kar rahe ho te tuhadi awaz hi badi mithi uthi badhiya awaz hai.
0: Are ji shukriya. Apna naam bhi dass do, apni tareef bhi kar do thodi.
1: मेरा नाम सीताराम है जी.
0: अच्छा जी.
1: मैं मोटर टोन प्लांट से बोल रहा हूं
0: जी. सीताराम जी, बहुत-बहुत स्वागत है प्रोग्राम से थवाड़ा.
1: जी जी
0: सीताराम जी, थानू शौक हैगा कुछ चीजा अपने घर से इकट्ठियां करन दा, करदे हो तुसी?
1: मेरे को तो नहीं होता है, नहीं है जी. मोबाइल करते मैं जरूर है जी, मतलब.
0: अच्छा, मोबाइल ते इकट्ठियां करदे हो चीजा? डिजिटल हो, डिजिटल जमाने से जी रहे हो सीताराम जी. ठीक है. मोबाइल से की गाने इकट्ठे करते हो कि फोटोज इकट्ठिया करते हो, की कुछ करते हो?
1: गाने वगैरह भी हां जी इकट्ठे करते हैं जी.
0: अच्छा,
1: ते हां जी गाना दूसरा डाउनलोड करना है.
0: ठीक है ठीक है ठीक है. हुंदे वैसे कई लोग जिन्हां नु ना फोन च फोटोज इकट्ठिया करन दा बड़ा शौक हुंदा, कलेक्शन हुंदा ना दे कोल, पुराना पुराना फोटो है ना, पुरानी तो पुरानी फोटो मिल जाएगी.
1: पुराने पुराने हां जी.
0: हां, उन्हें विच उन्हें विच मैं भी हां, तुहानू पता है. हाँ सच्ची, मेरे को भी बहुत सारिया फोटोज हैं. चलो यार, अपने अपने शौक होंगे ने, है ना, खुशी मिलती है सानू इन चीजा च करनी चाहिए. सो गाना केड़ा सुनना है तुसी? ठीक है जी, ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया. और हंस राज हंस की आवाज़ के सुनना चाह रहे हैं जी प्रोग्राम का अगला गीत. और उस गीत तो बाद देख रहे हैं कि अगले दोस्त कौन ने, और अपनी स्पेशल वाली जी चीज़ है जिदा कलेक्शन उन्होंने बना रखा है, वो आप लैके प्रोग्राम से शामिल हो जावे जी. स्टे ट्यून्ड.

वैसे जवाब तो साढ़े दोस्तों का नहीं है क्योंकि रोज देखो सानू पंजाबी तड़का च कॉल करते हैं और कॉल करके अपनी फरमाइशा जीडिया ने वो पूरी करते हैं और बड़ा ही मजा लगता उन्होंने गलबात करके और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से जो आप गलबात करते हैं है ना जी तो उन्होंने अंदर का जो एक कह लो कि एक फरमाइश वाला

0: वो रखी हुई है, एक डॉलर भी है, $5 कैनेडा का।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: ठीक है। तो ये जेड़ी पुरानी करंसी तुसी इकट्ठी की हुई है, तो
0: हाँ
1: किन्ने
0: जी,
1: कु नोट हुण तक मतलब सामभ के रखे हुए हैं, गिनती की कदे?
0: नहीं गिनती नहीं कीती जी, बस ऐदा ही बार रखे हुए है, जड़ा आंदा ही उदो 786 का सामभ लईदा सी।
1: अच्छा, एक नंबर, इस नंबर से तुसी नोट इकट्ठे किए हुए है ना, सीरीज हुंदी
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: ठीक है ठीक
0: हाँ
1: है।
0: जी,
1: ते ओ कोई
0: ओदा
1: भी मतलब
0: पुराने नोट भी है, 2 का, 1 का, 5 का, 10 का,
1: ए तो
0: 20
1: आनु, ए तो
0: का,
1: आनु मिले कितों सी?
0: ये बस जी ऐदा ही जी। जो काम करता सी, हुण तां फिलहाल काम नहीं कर रहा मैं, ते आंदे सीगे ते ओ सामभ लईदा सी।
1: अच्छा ठीक है
0: हाँ जी
1: ठीक है। हुंदा है ना कि साडे दादा पर दादा सानू दे के जांदे सी ओ
0: नहीं
1: नोट, ते
0: नहीं
1: असी ओ
0: नहीं
1: इकट्ठे
0: नहीं
1: कीते हुए है।
0: नहीं नहीं वो नहीं।
1: तो तुसी हुण इकट्ठे कर लो ना, ताकि आने वाली जनरेशन तुहानू कहे कि साडे दादा जी इकट्ठे करके गए
0: हाँ जी हाँ
1: सी।
0: जी,
1: ठीक
0: हैगा पोता भी हैगा अपना,
1: है।
0: 3 सवा 3 साल का।
1: हाँ ते बस ओनू दस्या करो कि देख, दो दा नोट दिखाया
0: नहीं
1: कदे ओनू, इदा दे नोट
0: जी अजय छोटा है जी।
1: छोटा है अजय, है ना? चलो वड्डा हो जाएगा तो अपनी कलेक्शन उन्हें दिखाइयो। मैं कह रही हूँ विच होर जिथो भी तुम्हें मिले ना।
0: मैडम एक दोस्त का नाम लेना चाहना वा, ले सकता वा?
1: नहीं जी नहीं, क्योंकि दोस्त अपना नाम खुद लैणगे आके दी कॉल लगेगी ता। तुसी अपना फरमाइशी गीत दस दो मैनू, केड़ा गीत सुनना है?
0: नची साडे नाल जी, और ओहदा हैगा जी कमलई दा गीत, ओ ला दियो।
1: जी, ठीक है जी ठीक है। सो नचने नू करे मेरा जी, तो कमल हीर दी आवाज़ दे विच एक गीत सुनना चाह रहे ने। और उस तो बाद देखो, दोस्तों दे नाम लैण दी गल जित्थे तक आ रही है, जिन्हें भी दोस्त दे कॉल लगते हैं है ना, तो बड़े खुश होंगे ने। सो बहुत सारे दोस्त देखो रल मिल के प्रोग्राम इंजॉय करते हैं, तो आप साड़ी कोशिश यही रहती है कि थोड़ी जो कॉल लग रही है तुसी आके अपनी आवाज़ साढ़े तक पहुँचाओ, तो अपनी फरमाइश पूरी करके जाओ, तो बाकी थोड़े दोस्त की गल उन्होंने भी कॉल लग जाएगी। टेंशन क्यों ले रहे हो जी, प्रोग्राम चल रहा है 12 बजे तक, स्टे ट्यून्ड।

हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैगनीशियम, मतलब मैं डॉक्टर नहीं बन रही हाँ, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय यही है कि अपनी डाइट दे विच ना एक्चुअली सानू काले चने तो जरूर शामिल करने चाहिए। जेकर याद भी नहीं रहने ना तां भी एक दिन तो जरूर किसी ना किसी फॉर्म से असी जरूर शामिल करिए, क्योंकि ये बेनीफिट्स ही बहुत ज़्यादा है। सब तो वड्डा बेनीफिट तो जी काले चने का यही है कि साडा जिहड़ा पाचन जिहड़ा एक शक्ति है ना साडी, ये मजबूत कर रहा है, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वधिया कर दिंदा। जिन्हां नूं प्रॉब्लम हुंदी है खाना छेती पचदा नहीं है, या फिर ब्लड नूं कह लवां शुगर नूं कह लवां कंट्रोल लगदा है, एनीमिया दे लई बहुत वधिया है, मसल्स नूं भी मजबूत बना रहा है, बोन्स दे लई साडी हड्डियां दे लई भी ये चीज़ जिहड़े काले चने बहुत वधिया ने, और कोलेस्ट्रॉल लैवल जिहड़ा घट वध जांदा है उहनूं भी मेनटेन करदा है, है ना जी। अपने ब्रेन लई भी है फायदेमंद, हार्ट लई भी फायदेमंद है। सो बेसिकली बहुत सारे दोस्त देखो सब्जी बना लेंगे ने, है ना, मतलब कि वधिया लगता है काले चने नाल राइस खाना बहुत वधिया लगता है। और बच्चियां दे लई तां तुसी इनू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म दे विच ना यूज़ कर सकते हो। किवें कर सकते हो ये मैं दसांगी लेकिन इस गीत तो बाद, क्योंकि अज दा मेरा फूड जिहड़ा फूड ऑफ द डे ये काला चने है। और काले चने मतलब किवें आपां किवें अप्लाई कर सकते हैं, की कुछ बना सकते हैं खास बच्चियां दे लई, दसांगी लेकिन इस गीत तो बाद। स्टे ट्यून्ड।

यस करो कि नो करो, पर अपनी जिहड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल है उहदे लई तां मैं कह रही हां हमेशा यस करनी ही चाहीदी है, है ना जी। प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम 102.7 FM रेनबो ते, और कोशिश साडी यही रहिंदी है कि असी तुहाडे लई है ना किसी ना किसी खास एक्सपर्ट

सो वंस अगेन वेलकम बैक. आज ये प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम. और देखो हेल्दी अपा रहन दियाँ गल्लां बातां भी कर लिया, सुपर फूड बारे भी गलबात कर ली है अज. और हुण एक चीज़ है जो देखो अजकल दे मौसम दे विच इस्तेमाल तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार की होंदा कि हो सकता है उन्हां जो तुसी हो जिन्हां नूं ये नहीं पता कि एसी दे मोड दे विच भी देखो किन्ने सारे मोड हुंदे और किस मोड दा आपां कदों इस्तेमाल करिए. बेसिकली चलता रहिंदा कूल मोड ते ही साडा एसी, लेकिन बहुत सारे मोड हुंदे ने. हुण तुसी कहो कि एक एसी दे रिमोट च इन्ने सारे मोड, यस एक्चुअली. और कूल मोड की देखो गल करिए अमूमन आप देखो जब गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी सानू तंग कर रही होंगी तो असी इस एसी का कूल मोड जरा ना ऑन कर लें ताकि जो कमरे का टैंपरेचर है जल्दी ठंडा हो जाए और असी उन्हें अपने अकॉर्डिंग सैट भी कर लें, है ना जी. सो बेसिकली गर्मी के दिनों के कूल मोड है, लेकिन जी अजकल का मौसम चल रहा है ह्यूमिडिटी इन्नी कु ज़्यादा हो रखी है, सो ये सानू ड्राई मोड जरा ना वो ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि ह्यूमिडिटी देखो घट कर देता है ना जी हवा की है और कमरे में अपना हल्का भी मतलब एक आरामदायक जहा वधिया जहा कर देता है, सूदिंग जहा कर देता है. सो इस करके अजकल के टाइम से तो ये ड्राई मोड जोड़ा है ना वो बेस्ट रहता है. और सर्दियों की गल करा तो हीट मोड आप ऑन कर सकते हैं, तो फैन मोड भी होंगे एक हूँ फैन मोड आ रहा है किसी का फैन नहीं रहे बाबा, एसी का जो फैन मोड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिर्फ सानू पक्खे की तरह चलाना है, उन्हें सिर्फ हवा चाहिए है, कूलिंग या हीटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सानू हवा लैनी है, ठंड गर्म नहीं करना, सिर्फ हवा की जो लोड होंगी उदो आप इस फैन मोड में छड़ सकते हैं. तो अगला है जी ऑटो मोड, जो पता ही नहीं है कन्फ्यूज आ गए यार कहड़ा मोड ऑन करिए, तो एसी अपने आप ही समझ लेंदा है कि इनू की चाहिए है ना. सो टैंपरेचर के अकॉर्डिंग एसी अपनी जड़ी कूलिंग है या हीट है उन्हूं अपने आप ही अपनी फैन स्पीड दे तय कर लेंदा है. सो ये होंदा है जी ऑटो मोड. इस तो अलावा होर केड़ा एक मोड है जो मैं मिस कर रही हूँ वो तुसी दसो अपने मन च सोचो. मैं फिलहाल इस गाने तो बाद आ रही हूँ, थोड़े नाल जुड़ रही हूँ जी, स्टे ट्यून्ड.

कैलाश खेर दी आवाज़ मैगा जी दीवाना बना ही दिंदी है ना जी। सो इंजॉय करे सी तुसी प्रोग्राम होम स्वीट होम मेरे यानी रिचा दे नाल। और मैं कितने नहीं जा रही हूँ, मेरा भी थोड़ा साथ जुड़िया हुआ है ठीक दोपहर से 2 बजे तक। फिलहाल इससे प्रोग्राम तो आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मेरा मतलब है जी इस प्रोग्राम में इतनी टाटा बाय बाय कर रही हैं और आ रही हैं 1 बजे अगला प्रोग्राम लाके। मिडनाइट मेलोडीज़ का टाइम रहेगा जी 1 बजे तो लेके 2 बजे तक। सो स्टे ट्यून्ड दिल से दिल तक।

कहानी लिखी थी चांद सितारों ने, वक्त ने भी कसम खाई थी मिलाने की किनारों से। रास्ते अलग थे पर मंजिल तो एक ही थी, धड़कनों ने भी कहा फिर यही चाहिए। तुम मिले, दिल खिले, और फिर जीने को क्या चाहिए।

सो क्या है किसी ने कि रात भी गुजर जाती है, दिन भी ढल जाता है, भीड़ में रहकर भी दिल तन्हा रह जाता है। सारे रिश्ते निभा लिए, सारे फर्ज अदा किए, बस तेरे साथ वाले पल जीने का मौका नहीं पाया। जीने के बहाने तो लाखों हैं, पर जीना ही तुझको नहीं आया।

ये दिल है कि मानता ही नहीं इन बंदिशों को, हर धड़कन में ढूंढता है कोई नया अरमान, ना कैद में रहता है ना किसी की चाहत में ये ठहरता है, जहाँ नजर झुकी बस वहीं अपना ठिकाना समझ लेता है, जख्म खाकर भी ये मुस्कुराएगा, है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस

ना वक्त देखता है ना हालात समझता है, बस जहां चाहत मिले बस ये वहीं बहक जाता है। कोई जख्म दे जाए अगर तो उसे उम्मीद भी लगा लेता है, टूट कर भी उसी का ही उसके लिए ही बस दुआ मांगता रहता है, क्योंकि जिससे प्यार किया है एतबार भी किया है, है ना जी। सो दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, अब आ ही गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए।

वाकई दिल जिहड़ा है ना वो दिल ही है, और दिल का क्या भरोसा है ना, अज मतलब आ गया किसी दे प्यार तो फिर की किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दुख उदो होंदा है जदों सामने वाला कहता है कि ये जिहड़ा प्यार है ना अपने तक ही रखो, क्योंकि मेरा की भरोसा कल नूं मैं कित्थे चला जावां, है ना, कुछ नहीं पता। जिंदगी दा जिहनूं आपां प्यार करते हैं उहदे तो मतलब उन्होंने साढ़े तो बहुत दूर ले जाए। इस करके तो कह रहा है कि इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। सुनो जा गीत, इंजॉय करते हैं आज ये प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज दिल से दिल तक।

आ गई ना हंसी देखो तानू भी इस गीत नु सुन के, और यही कमाल है जी रेडियो दा, है ना जी। और रेडियो सुन के चेहरे ते स्माइल आई जांदी है। वैसे चेहरे तो मैनू याद आया कि हुन जिहड़ा अगला गाना जुड़िया है ना प्रोग्राम मिडडे मेलोडीज दा, बिल्कुल आखिरला गीत ए वी चेहरे नाल ही जुड़िया होया है, सीरत नाल, सूरत नाल जुड़िया होया। ते अगला जिहड़ा प्रोग्राम है दिल आज शायर है, ओदे विच भी तुसी अपनी जिहड़ी आज शायरी भेजनी है ओ इस खूबसूरत चेहरे नाल, सूरत नाल, या फिर कुछ भी कह लिए, शक्ल कह लिए, चेहरा कह लिए, सूरत कह लिए, एदे ते मिलदे जुलदे वर्ड्स नाल ही तुसी अपनी शायरी भेजोगे। और अगले जिहड़े दोस्त ने उस प्रोग्राम नू लै के बस कुछ ही बोला जो तुहाडे कोल आ रहे ने, सो बिपन सुमन दे नाल प्रोग्राम रहेगा जी। फिलहाल मैनू रिचा नू देओ अज दे दिन लई इजाजत, मिलांगी बहुत जल्दी तुहानू एफएम रेनबो ते, उदों तक एंजॉय करो मिडडे मेलोडीज दा, बिल्कुल लास्ट वाला गीत, स्टे ट्यून्ड।

एफ एम बैंड 102.7 MHz, आकाशवाणी जलंधर 103.6 MHz, आकाशवाणी अमृतसर, न्यूज़ ऑन AIR ऐप दे जरिए तुसी इस वेले एफ एम रेनबो चैनल दे नाल जुड़े हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम दिल आज शायर है। सो अज तुसी अगर इस प्रोग्राम च अपनी शायरी, अपनी गज़ल, अपनी रचना भेजनी है तां उस दे विच चेहरा, सूरत, शक्ल ए शब्द जरूर होने चाहिए ने जी। पहली शायरी साढ़े तक पहुँच चुकी है जी, लोहा बाजार मलेरकोटला तो राकेश कुमार जी ते लिखते ने, तुसी याद नहीं करते असी भुला नहीं सकते, तुसी याद नहीं करते असी भुला नहीं सकते, तुसी हंसा नहीं सकते असी रुला नहीं सकते, इन्नी खूबसूरत मुहब्बत है इस चेहरे नाल साडी, तुसी जान नहीं सकते ते असी दस नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगली शायरी साइड तक आई है जी, जगदीश राय गर्ग जी ने बस स्टैंड मानसा तो भेजी है, लिख रहे ने कि हमने चेहरे पर मुस्कुराहट रख कर, हमने चेहरे पर मुस्कुराहट रख कर आईने को हमेशा गुमराह रखा है। मैगा जी, जगदीश जी तुहाडे तो वड्डा मैनू लगता इस दुनिया दे विच कोई अदाकार नहीं होएगा कि जिन्हें आईने नूं ही हुण तक गुमराह रख्या होया है। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी शायरी साझी करन दे लई। अग्गे वधदे आ जी, अग्गे साडे कोल शायरी आण पहुंची जी, भेजण वाले साडे दोस्त ने बलविंदर सरा पिंड मोरजन सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे ने, मेरे अंदर झांक कर देख टुकड़े में मिलूंगा, ये हंसता हुआ चेहरा देखने के लिए है। मलादा जी, सारे लोग जिन्हें भी ने इस दुनिया दे विच टुटे हुए ने, कोई ना कोई जख्म ठोकर खाधी हुई है, कोई गल नहीं जी, खाधी हुई है तो फिर वो वास्ते तो असं प्रोग्राम खास तौर पर लैके आने जी।

पूरे मुंह पर सिर्फ वाल ही वाल है। सो बहुत बहुत शुक्रिया जी, और उम्मीद करते हैं कि दिल गदगद होया होएगा, चेहरियां ते मुस्कुराहट आई होएगी। सो चेहरा सोहना है या नहीं सोहना है, कहिंदे सीरत सोहनी होनी चाहिए है। सो सीरत सारियां दी सोहनी है, इस करके दोस्त साडे नाल हर वार इस प्रोग्राम च जुड़ते हैं। तुहाडा सारियां दा दिलों धन्नवाद अज दे इस प्रोग्राम च अपनी हाजिरी लगवाउण दा। सो अगे वधदे जी, एक आखिरी गज़ल अज दे इस प्रोग्राम च तुहाडे सारियां नाल सांझी करन जा रहे हैं जी, उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगा।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर

0: स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की।
0: जी,
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं।
0: आज
1: हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था।
0: जी अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे। गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने।
0: जी,
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही।
0: जी,
1: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
0: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह

0: जाते
1: कल खेलेंगे यू के जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।

0: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
1: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
0: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
0: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
0: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज

0: समुद्र तट पर आकर बसे। फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आइए।
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग। गुड

0: मॉर्निंग, आइए आइए आइए।
1: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
0: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
1: अच्छा अच्छा।
0: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
2: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
0: जी।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
2: वाकई कमाल है।
0: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
2: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
1: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
0: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: सच?
1: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: हुणे तुसी सुन रहे सी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। इस वेले रेनबो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 3 बजन जा रहे हैं। हुण तो कुछ ही पलों के असी तुहानू लै चलांगे रेनबो के दिल्ली केंद्र, जिथे तुसी सुनोगे सेहत आधारित प्रोग्राम हैलो रेडियो डॉक्टर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: मजबूत हड्डियां, सुरक्षित कदम और स्वस्थ जीवन, इसी विश्वास के साथ करते हैं आज के रेडियो डॉक्टर की शुरुआत। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। कहते हैं स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चूक, सड़क दुर्घटना, खेल के दौरान लगी चोट या फिसलन जैसी घटनाएं हमारी हड्डियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। हड्डी का टूटना यानी फ्रैक्चर केवल दर्द ही नहीं देता, बल्कि समय पर सही उपचार ना मिले तो लंबे समय तक परेशानी का कारण भी बन सकता है। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का विषय है फ्रैक्चर्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद जी।
1: और साथ हैं डॉक्टर विनय सिंगला, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
1: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा

0: सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किस दर्द या चोट को हम समझें कि फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर क्या होता है और इसका मुख्य कारण क्या है?
1: देखो, फ्रैक्चर के मेन कारण तो हैं कि चोट लगना, भले वो एक्सीडेंट हो, कहीं फिसल के गिरे या खेल कूद में भी स्ट्रीनस एक्टिविटीज़ के कारण भी कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। कोई भी दर्द जो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, उसमें सूजन आ रही है, तो उसमें फ्रैक्चर सस्पिशन हमेशा रखना चाहिए, जो कि एक डॉक्टर को दिखा के भले वो एक्सरे करे, उससे निकाल लगाया जाए कि फ्रैक्चर है या नहीं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई गिर गया, दर्द हो रहा है, तो क्या यही फ्रैक्चर का इंडिकेटर है या कुछ और भी हो सकता है? डॉक्टर विनय,
2: गिरने के बाद तो हमेशा हमें फ्रैक्चर का सस्पिशन करना ही चाहिए, लेकिन गिरने के बाद अगर पर्सन अपना अपर लिम या लोअर लिम यूज़ ना कर पाए, वज़न ना दे पाए, ज़रूरत से ज़्यादा दर्द हो, सूजन आ जाए, या कहीं ओल्ड एज पेशेंट जो ब्लड थिनर्स वगैरह खा रहे होते हैं, तो उसमें गिरने के बाद अंदर खून इकट्ठा हो जाता है, नीला रंग पड़ जाता है, ये सब कंडीशंस के अंदर हमें फ्रैक्चर सस्पेक्ट करना चाहिए।
0: तो क्या इसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं कि हाँ हमें डिफ्रेंशिएट कर सकें हम?
1: हाँ, फ्रैक्चर्स के कई टाइप्स हैं मैडम। जैसे कि अगर फ्रैक्चर हुआ और कहीं उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसे हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, क्लोज फ्रैक्चर्स में बाहर से कोई जख्म नहीं होता, लेकिन जो ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं, जिनमें उसका फ्रैक्चर का कंटैक्ट एक्सटीरियर से हो जाता है, बाहर से हो जाता है, तो कीटाणु वहाँ जल्दी पहुँचते हैं और इन्फेक्शन होने का डर काफ़ी हो जाता है, जिसमें हमें अर्जेंसी में उस इलाज करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देने चाहिए, ये सब है उसमें।
0: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पे। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं, सामान्य लक्षण क्या हैं, जिनकी अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए।
1: जब भी किसी को फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पे सूजन होगी, ठीक है, और मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हमारे हाथ की या पैर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इसमें हमें खड़ा नहीं हुआ जाएगा या मूवमेंट नहीं करी जाएगी, तो ये मान लेना चाहिए कि फ्रैक्चर की काफ़ी संभावना है और डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज कराया जाए, भले वो प्लास्टर करें, ऑपरेशन करें, किसी भी ढंग से करें, तो वो करना चाहिए।
0: यदि किसी व्यक्ति को अगर फ्रैक्चर हो जाए, वो गिर जाए या चोट लग जाए, तो वो क्या करे और क्या ना करे इमीडिएटली?
1: सबसे पहले को चोट लग जाए, कहीं जख्म नहीं है, सिर्फ क्लोज इंजरी है, तो बर्फ़ का सेक करें, कोल्ड फर्मेंटेशन इज़ बेटर, कोई गर्म पट्टी बांध दें, कोई स्प्लिंट होता है गले में डालने का, स्लिंग हो गया या कोई स्प्लिंट, गले का पट्टा, पैर का पट्टा, नी इमोबिलाइजर या कोई भी तरह का जो ब्रेस हो, बाइंडर हो, वो पहना जाए और वेट ना करे, इसके ऊपर वजन ना दे, ठीक है। कई कई चोटें ऐसी हैं वहाँ पे मालिश करने से ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, जैसे कोहनी का फ्रैक्चर हो गया, वहाँ मालिश करने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं, कोहनी की मूवमेंट में आगे चल के बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है। तो जैसे कोहनी की कभी मालिश नहीं करनी चाहिए चोट पे भी। तो बाकी तो फिर जब एक्सरे होगा उसका इलाज अलग अलग है, किसी में प्लास्टर होगा, किसी में ऑपरेशन होगा, वो डॉक्टर ही बताएगा एक अच्छे से।
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, आई एम सागर मखीजा फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई हैव टू क्वेश्चंस। इफ अ पर्सन फेल्स फ्रॉम अ बाइक ऑन रोड एंड इफ ही गेट्स फ्रैक्चर इन लेग, हाउ कैन वी टेक हिम टू हॉस्पिटल सो दैट इट डजेंट गेट वर्स? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्योर द फ्रैक्चर? डॉक्टर विनय,
2: इफ द पेशेंट फॉल्स फ्रॉम द बाइक एंड द सस्पिशन ऑफ फ्रैक्चर इज देयर, इट मींस व्हेन suspicion fracture is there, when there is a gross swelling and out of proportion pain is there, and there is the mobility at the bone site, means the bone fragments gets the improper mobility is there at the fracture site, and the patient is having a severe pain, in that case patient has to be mobilized to the hospital. In that case, if we have some wooden splint, we can tie it with a cloth and we can transport the patient to the hospital. Or if we don't have anything, we can tie both the legs along with that. Or sometimes we have some cast in the ambulance. In that case, we can put a cast and transport the patient to the hospital.
0: एक और मैसेज है हमारे पास, लिखते हैं, आरजे मैम और डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ कि कॉलर बोन का फ्रैक्चर कैसे पता चलता है, इसका क्या इलाज है और इसमें इतनी तकलीफ होती है, इसके लिए हम क्या करें, तो कृपया बताने का कष्ट करें। शिव मेरठ से। डॉक्टर जी,
1: हाँ नमस्कार जी। कॉलर बोन, जैसे कि नाम ही है, हमारे जो कॉलर है उसके नीचे की जो बोन है इसे कॉलर बोन कहते हैं। तो इसमें ये सबक्यूटेनियस बोन, मतलब स्किन के नीचे की बोन है, इसमें जब भी फ्रैक्चर होगा, सूजन आएगी, तो एकदम से मालूम पड़ ही जाता है कि यहाँ इस हड्डी का टूटा है या कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो स्लिंग बांधा जाए, जब भी चोट लगे स्लिंग बांध के रखें, कफ एंड कॉलर स्लिंग बोलते हैं, गले

0: से लेकर आपकी कलाई तक वो बांध के रखें और फिर उसके बाद में डॉक्टर से मिलें। अब इसके जो इलाज है 90% केसेस तो बिना ऑपरेशन के ही ये ठीक हो जाता है। उसमें हम फिगर ऑफ एट बैंडेज, क्लेविकल ब्रेस बांधी जाती है, जो दो डेढ़ से दो महीने तक समय लगता है इस हड्डी को जोड़ने में। कई कई केसेस में जहां वो फ्रैक्चर जो है स्किन को पियर्स कर रहा हो या काफ़ी दूर फ्रैगमेंट्स पड़े हैं, तो उनमें हम प्लेट्स लगाना और रॉड डालना, इस करके भी हम इस अस्थि को अच्छे से जोड़ सकते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ, पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: जी, मेरे दो बड़े अहम सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि किसी शख्स को, चाहे वो पेशेंट है या फिर बिल्कुल फिट एंड फिट गुड़म गुड़ है, कैसे उसे पता चले कि मेरी हड्डियों में कमजोरी है और या फिर मेरी हड्डियां मजबूत हैं? दूसरा सवाल कि बढ़ती उम्र में होता है कि हड्डियां ही बढ़ती हैं, नसें भी बढ़ती हैं, पर अब आवश्यकता से ज्यादा नसें हड्डियां बढ़ जाएं या धनुषनुमा हो जाए, आगे और झुक जाते हैं। लोग देखो बुढ़ापे में, अधेड़ अवस्था में जो होता है, ओल्ड एज में लोग ये हड्डियां झुक जाते हैं, लोग झुक के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई शख्स क्या करे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जरा बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज गाइड करें।
0: नमस्कार जी, राजेंद्र जी। तो सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि कैसे पता लगाएं कि हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। हम एक्सरे से, डेक्सा भी एक स्कैन होता है बोन मिनरलाइजेशन का, विटामिन डी के चेकअप होते हैं, कैल्शियम के चेकअप होते हैं, इनसे हमें आइडिया लग जाता है कि हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। ठीक है, और जैसे आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी जो झुक जाती है उम्र में, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में काइफोसिस कहते हैं, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का खास लक्षण है। ठीक है ना, जैसे हमारी जो वर्टिबल बॉडीज़ हैं उनकी हाइट एंट्री आगे की तरफ से कम होती जाएंगी तो पीछे झुकाव आता जाएगा, कुब निकलती जाएगी, ये कमज़ोर हड्डियों की निशानी है। इसको करेक्ट करने के लिए अच्छा खान पान, कैल्शियम, वाइटामिन डी, एक्सरसाइजेज, आपका बैठने का पोस्चर, जैसे हम सोफे पे बड़ी देर तक लीन करके बैठ जाते हैं, वो सब गलत चीज़ें हैं। और करेक्ट करने के लिए ब्रेसेस भी आती हैं, करेक्टिव ब्रेसेस भी आती हैं जो पीछे आपका पोस्चर करेक्ट करे, बैठने का सही ढंग। तो ये कैल्शियम, विटामिन डी, एक्सरसाइज और इन चीज़ों से सही हो सकता है।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने टेस्ट की बात करी, तो फ्रैक्चर की पुष्टि के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं?
0: फ्रैक्चर्स की पुष्टि के लिए सबसे जो कॉमन टेस्ट है वो एक्सरे है मैडम। एक्सरे से हमें मालूम पड़ जाता है कि इफ़ देर इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, देन इट मीन्स ए फ्रैक्चर। अगर हड्डी की अगर कंटिन्यूशन में कहीं ब्रेक है तो वो फ्रैक्चर ही होता है। और दूसरी जांचें जिनमें मालूम पड़ जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन चीज़ों से भी मालूम पड़ जाता है हमें फ्रैक्चर है या नहीं।
1: डॉक्टर विनय, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के फ्रैक्चर है तो किन कंडीशंस में या सिचुएशंस में प्लास्टर लगाया जाता है या किन मामलों में ऑपरेशन करना पड़ता है?
3: आमतौर पे बच्चों में ज़्यादातर फ्रैक्चर्स जो होते हैं प्लास्टर से ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में अगर प्लास्टर लगने के बाद भी थोड़ा बहुत टेढ़ापन रहता है, वो उम्र के हिसाब से जैसे जैसे हड्डी ग्रो करती है वो टेढ़ापन ठीक हो जाता है। और लेकिन कुछ एक फ्रैक्चर्स होते हैं बच्चों के अंदर भी जिसके अंदर ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे मान लो एल्बो के अंदर फ्रैक्चर होता है, अगर फ्रैक्चर ज़्यादा डिस्प्लेस होता है या एल्बो के अंदर बाहर की तरफ जिसको हम लेटरल कंडाइल कहते हैं उसके अंदर फ्रैक्चर्स होता है, इन कंडीशंस के अंदर हमें ऑपरेशन करके उसके अंदर बिना खोले हुए, बिना चीरा दिए हुए दूरबीन के नीचे हड्डी को बिठा कर तारें डालनी पड़ती हैं। एडल्ट पेशेंट के अंदर हम आज की डेट में जैसे हम डिक्टम कहा जाता है, लाइफ इज़ द मोबिलिटी एंड मोबिलिटी इज़ द लाइफ, इट मींस कि वी हैव टू मेक द पेशेंट मोबिलाइज एज अर्ली एज पॉसिबल। इसमें पेशेंट्स को आज की डेट के अंदर बहुत डिफरेंट मॉडलिटीज़ आ गई हैं जिसके अंदर हम पेशेंट फ्रैक्चर्स को बिना चीरा दिए हुए लेज़र के द्वारा अंदर रॉड डाल देते हैं और पेशेंट की मोबिलिटी जल्दी हो जाती है और हड्डी भी जल्दी जुड़ जाती है, देर इज़ नो स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स। बट समटाइम पेशेंट जब फ्रैक्चर्स अनडिस्प्लेस्ड है और इन

0: एक्सेप्टेबल कंडीशंस हैं एंड पेशेंट इज़ नॉट विलिंग और द पेशेंट इज़ नॉट मेडिकली फिट फॉर द सर्जरी, इन दोज केसेज वी कैन अप्लाई द प्लास्टर आल्सो।
1: जैसे बच्चों की अगर बात करी, बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, उनके फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे उनकी बोन्स पे इफेक्ट ना आए, ग्रोइंग एज पर, ग्रोइंग हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े?
2: जो कई के फ्रैक्चर्स ना बच्चों में खास ध्यान देने वाली बात है, जिससे बच्चों के बोन एंड्स पे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो ग्रोथ प्लेट्स बच्चे की बोन को लंबा कर रही हैं, और वो जब बच्चा मैच्योरिटी अटेन करेगा 15-20 साल की एज में, तब जाके वो ग्रोथ प्लेट फ्यूज्ड होंगी। अगर उस तरफ फ्रैक्चर हो जाए तो वो जुड़ने के बाद भी बोन ग्रो होगी वो टेढ़ी ही होती जाएगी, डेट विल क्रिएट डिफॉर्मिटी। तो ऐसे केसेस में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जुड़ जाए तो चल जाएगा, ऐसे केसेस में हमें परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए होती है, ठीक है ना। इसे एपिफिजियल फ्रैक्चर्स बोलते हैं या ग्रोथ प्लेट के अराउंड फ्रैक्चर्स बोलते हैं। इसमें अच्छा 100% अलाइनमेंट ऑफ द फ्रैक्चर इज मस्ट, ठीक है। बाकी जो बीच की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसे हम डायफाइसिस कहते हैं, जो एंड्स ऑफ द बोन्स नहीं हुए, बीच में हुआ, उसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ापन रहेगा तो बच्चा रिमॉडल कर जाता है। जब बच्चा ग्रो होता है द बोन रिमॉडल्स एंड डिफॉर्मिटी गेट्स करेक्टेड, बट नॉट एट द बोन एंड्स, जहाँ किनारे हैं, यानी कि कोहनी के पास वाले, घुटनों के पास वाले हड्डियाँ जो फ्रैक्चर होती हैं बच्चों में, उनमें ऑपरेशन की काफ़ी संभावना रहती है, क्योंकि 100% अलाइनमेंट लाना पड़ता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल करी?
3: मैं मिसेस बेबी बोल रही हूँ, पंचकुला हरियाणा से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है, November 30, 2024 को मेरी सर्जरी हुई थी, मैं गिर गई थी, तो मेरा फ्रंट का फेमर वॉल टूट गया था। हेलो।
2: हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं, हम आप बोलते जाइए।
3: अच्छा ठीक है, तो मेरी सर्जरी हुई तो हो भी गई जल्दी, और मैं रिकवर भी बहुत जल्दी कर गई।
2: आपका आपकी एज क्या है?
3: मैं 75+ हूँ।
2: ठीक है मैडम।
3: November 24 में मेरा ऑपरेशन
2: था। हाँ मैडम, ठीक है।
3: और मैं 27वां साल है, मैं योगा में हूँ, तो उससे वो मेरे डॉक्टर कहते शायद आपकी मेंटल हेल्थ भी उसी से ज्यादा ठीक है, तो आप जल्दी रिकवर कर गए। अब डॉक्टर साहब ऐसा है कि एक तो मैं यहाँ हेड हूँ अपनी क्लास की, तो मैं नीचे बैठना बिल्कुल मना होता है।
2: मैडम आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर था, जो
3: हाँ जी, हाँ
2: जो हिप के एकदम साथ में, तो इसमें
3: हाँ
2: इसमें हम बॉल को रिप्लेस कर देते हैं।
3: हाँ जी, ठीक है ना, रिप्लेस की है।
2: जिस शेप की वो आपका जो हेड था वो, उसमें ब्लड प्रवाह खत्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है, इसलिए 75 की एज में उसे जोड़ के हम स्क्रू एंड प्लेट्स वगैरह किसी चीज़ से जोड़ते नहीं, उसको निकाल के उसी शेप का दूसरा रिप्लेस कर दिया जाता है हेड, ठीक है ना, जिसे लेमैन लैंग्वेज में चूल्हा बदलना बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डिसलोकेशन,
3: ठीक है।
2: तो डिसलोकेशन ना हो इसलिए कहते हैं कि नीचे ना बैठें, आलती पालती ना मारें, स्क्वेटिंग एंड सिटिंग क्रॉस लेगिंग हैज टू बी अवॉइडेड थ्रू आउट योर लाइफ।
3: पर डॉक्टर साहब जैसे मैं क्लास करती हूँ, मैं बेड पर लेट के कर सकती हूँ?
2: अब बेड पर लेट के कर सकती हैं, बैठ के कर सकती हैं, कुर्सी पे, सोफे पे, बिल्कुल
3: खड़े भी करती हूँ,
2: हाँ खड़े होके भी कर सकती हैं, बस आलती पालती नहीं मारनी है और नीचे नहीं बैठना है।
3: नहीं, बेड पर उल्टा भी लेट के कर सकते हैं?
2: बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम।
3: नहीं, मेरे को ये था कि मैं कहा जब तक कोई कंफर्मेशन आपके थ्रू ना हो तो
2: नहीं
3: मैं कुछ ऐसा नहीं।
1: तो चलिए मिसेस बेदी, आपको आपकी जानकारी मिल गई है। डॉक्टर साहब जैसे कि इन्होंने, मिसेस बेदी ने बात करी, ओल्ड एज पीपल हैं, अगर ओल्ड एज में अगर हिप फ्रैक्चर हो जाए तो जनरली और क्या किया जाता है?
2: ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर हो जाए मैडम, तो मैं कहूँगा 100% पेशेंट्स में एक ही अप्रोच होनी चाहिए सब डॉक्टरों की, कि उस फ्रैक्चर्स को ऑपरेट करके पेशेंट को खड़ा किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फ्रैक्चर होता है ये चोट के कारण ही नहीं टूटा है, ये कमज़ोर हड्डियां जो हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इस कारण भी फ्रैक्चर हो जाता है। अगर इसमें हम प्लास्टर करें या ट्रैक्शन लगाएं तो लेटे रहने के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे बेड सोर हो जाएगा लेटे रहने से, पैर में पिंडलियों में खून जमा हुआ है, जमा खून ब्रेन में जाके ब्रेन क्लॉट करेगा।

0: कहीं गड़बड़ करेगा, लेटे लेटे यूरिन इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो कॉम्प्लिकेशन इज मच हायर इन दोज पेशेंट्स विच वर नॉट ऑपरेटेड. तो अच्छे रिजल्ट उन्हीं पेशेंट्स में है जिसमें रिस्क उठा के जल्दी से ऑपरेशन किया जाए ताकि पेशेंट की एक्सरसाइज और चलना जल्दी से जल्दी किया जा सके, क्योंकि बेड रिडन कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी इस एज में पकड़ लेती हैं.
1: और अगर जैसे कमर की हड्डी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसे कैसे ट्रीटमेंट करी जाती है?
2: कमर की हड्डी के जब फ्रैक्चर्स होते हैं, पहली बात तो ये या तो किसी हाई एनर्जी ट्रॉमा से जैसे फॉल फ्रॉम हाइट है उससे हो जाते हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट के अंदर जो फर्श गीला हो वहाँ स्लिप करके गिर के, जैसे ओल्ड एज पेशेंट मंदिर जाते हैं फर्श गीला हो वहाँ गिर जाते हैं, वहाँ फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं. इन कंडीशंस के अंदर आमतौर पर तो वैसे जहाँ पेशेंट दर्द बताता है उस जगह के पार्ट का एक्सरे लेकर पता चल जाता है कि मरीज़ को फ्रैक्चर है कि नहीं. पर जब कई बार हड्डी बहुत कम पचकी होती है जहाँ पे अभी हमें पता नहीं चलता, तो उस कंडीशन के अंदर हमें MRI करवा लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है. ये तो बात होगी कि कंफर्मेशन कैसे करना है, नंबर वन. नंबर टू, जब कमर की हड्डी का फ्रैक्चर होता है इस कंडीशन, कमर की हड्डी के पीछे ही जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है पीछे स्पाइनल कॉर्ड आती है, इट इज़ जस्ट लाइक केबल विच कैरीज द करंट टू होल ऑफ द बॉडी. अगर हमें इसके अंदर उस केबल के ऊपर, उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है तो कॉरस्पॉन्डिंग हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाता है, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, वैसी कंडीशन हो जाती है. उस चीज़ को बचने के लिए जब भी कमर का फ्रैक्चर होता है पेशेंट को एब्सोल्यूट बेड रेस्ट कहा जाता है. एब्सोल्यूट बेड रेस्ट मीन्स टॉयलेट भी आपको बेड पे ही करना है. अब रहेगी उसकी बात मैनेजमेंट की. अगर तो ऐसे पेशेंट हैं जिसको हमें कंजर्वेटिव मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना है, उस कंडीशंस के अंदर कुछ ब्रेसिस बना दी जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर साइट, जैसे टेलर्स ब्रेस है, उस तरीके से अंदर ब्रेस पहना के पेशेंट को कहा जाता है कि कम से कम बिस्तर के अंदर 6 से 8 हफ्ते आपको बिस्तर के अंदर ही रहना है, लैट्रिन पेशाब भी आपको बिस्तर पे ही करना है, तब की हड्डी थोड़ी स्ट्रांग नहीं हो जाती. नहीं तो बिना स्ट्रांग किए अगर हड्डी नहीं जुड़ती, पेशेंट खड़ा होता है, नसों पे दबाव पड़ेगा, तो जैसे पैरालिसिस इस कंडीशन जैसी हो जाती है वैसी कंडीशन हो सकती है. अगर जिस कुछ कंडीशन के अंदर हम इसके अंदर जब वहाँ पर फ्रैक्चर होने के कारण जो फ्रैक्चर के फ्रैगमेंट्स हैं स्पाइन के फ्रैगमेंट्स हैं वो पीछे डिस्प्लेस होकर पीछे नसों को चुभोते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, उस कंडीशंस के अंदर हमें इसको ऑपरेशन करने के उस प्रेशर को ख़त्म करना पड़ता है और उसके अंदर हमें प्लेट पेच भी लगाने पड़ते हैं. पर कई बार आज की डेट में अब लेटेस्ट जो मॉडलिटी आई है जिसके अंदर इतना कंप्रेशन नहीं है और पेशेंट को पेन काफ़ी ज़्यादा है, इस कंडीशन के अंदर हम लेज़र वाला ऑपरेशन भी कहते हैं जिसको हम वर्टिब्रोप्लास्टी कहते हैं, काइफोप्लास्टी कहते हैं, वेसल प्लास्टी कहते हैं. उस कंडीशन के अंदर हम लेज़र दूरबीन के नीचे देखते हुए एक इंजेक्शन लगा देते हैं, सीमेंट का इंजेक्शन लगा देते हैं, वो वर्टिब्रॉडी यहाँ फ्रैक्चर होता है उसके अंदर जाता है, फ्रैगमेंट्स फिलने बंद हो जाते हैं, पेशेंट को हम जल्दी चला सकते हैं, उसको बेड रिडन नहीं होना.
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, मैम नमस्ते, डॉक्टर विनय जी को भी नमस्ते, डॉक्टर अजय जी को भी नमस्ते, आप सभी टीम को धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए. मैं 52 वर्षीय हूँ और कुछ वजन उठाने के कार्य को करने की मजबूरी है, दोनों कंधों में दर्द रहता है, पेन बाम से आराम मिलता है, तो सलाह दीजिए जिससे मेरी हड्डियाँ मजबूत रहे. ये है कृष्णा रायपुर सी जी.
0: हाँ जी कृष्णा जी, देखो वज़न उठाना आपकी मजबूरी है जैसा बता रहे हैं, तो उसमें तो हमें कमर दर्द की और घुटनों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको कंधों की ज़रा दिक्कत है, तो क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
1: हाँ जी जी, वो मैसेज है तो वो सुन रहे हैं.
0: चलिए, तो फिर अगर शुगर वगैरह नहीं है आपको, कोई फ्रोजन शोल्डर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको व्यायाम वर्जिश ही करनी है कंधों की, जो फिजियोथेरेपी वाले आपको सर्वाइकल शोल्डर एंड स्कैपुलर एक्सरसाइजेज अच्छे से सिखा देंगे, ठीक है. और बाकी अपना खान पान में दूध, दही, पनीर, फल, सलाद का ध्यान रखेंगे. विटामिन डी की जो नेचुरल डाइट है वो है बॉइल्ड एग्स, फिश एंड सनलाइट. अगर आप ये सब का सेवन नहीं हो पाता है तो विटामिन डी, कैल्शियम डॉक्टर से मिल के भी लें, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे.
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर. अभी हम जानेंगे कि किस तरीके से अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, कैसा खान पान रखें और कैसे सुरक्षित लग रहे. लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पे। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट अगर फ्रैक्चर हो जाता है जहाँ पर और प्लास्टर नहीं लग सकता, तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है?
2: हाँ, कई जगह ऐसी हैं, जैसे कि रिब्स हो गई, रिब्स में पसलियों का जो फ्रैक्चर होता है, कॉलर बोन का भी फ्रैक्चर होता है, तो इसमें भी प्लास्टर नहीं करते हम। रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारों में फ्रैक्चर्स में प्लास्टर नहीं किया जाता। टेल बोन जो है, रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा, कॉक्सिक्स, वहाँ भी प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती है, ना कर सकते हैं। कूल्हे की हड्डियाँ भी टूट जाएँ, उसमें अगर प्लास्टर कर दें तो पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें भी प्लास्टर इलाज नहीं है इसका। बच्चों में तो फिर भी ठीक है, कूल्हे की हड्डियों के फ्रैक्चर्स में हम प्लास्टर कर देते हैं, स्पाइका कर देते हैं, पर बड़ों में ये संभव नहीं हो पाता। तो इनके जो इलाज हैं वो शुरुआत से शुरू करता हूँ मैं, जैसे गर्म पट्टी बांधी, रेस्ट किया, थोड़ा समय दिया, अच्छा खान पान किया, तो उन चीज़ों से हड्डियाँ जुड़ जाती हैं समय के साथ। ये ध्यान रहे, फ्रैक्चर जो है हम डॉक्टर्स लोग इतने नहीं जोड़ते जितने पेशेंट खुद जोड़ता है। पेशेंट का अच्छा खान पान, अच्छी हीलिंग, जो उसको एंसेस्ट्रल सेट मिला है, उसको पुश्तैनी जो हड्डियाँ जोड़ने की हीलिंग की पावर मिली है, उससे हड्डियाँ जुड़ती हैं। हमारा तो काम उसे सही राह दिखाना है जब तक वो जुड़े ना, ठीक है ना। वी ओनली असिस्ट द नेचुरल हीलिंग, वी कांट फाइट विद द नेचुरल हीलिंग। तो गर्म पट्टी बांधना, सिकाई करना, रेस्ट देना, इन चीज़ों से जुड़ जाती हैं। कॉक्सिक्स, रिब्स का फ्रैक्चर हो जाए तो ज़्यादातर में तो रिब बेल्ट पहनने से काम चल जाता है, बड़े रेयर केसेस में ऑपरेशंस वगैरह करने की नौबत आती है। कॉक्सिक्स का जहाँ तक बात है तो खड़े होने और चलने में भी प्रॉब्लम है, तो इनके लिए बैठने के लिए सीट आती है, कॉक्सीडाइनिया सीट, ठीक है ना। ऐसी सीट पहने तो दो महीने में लगभग ये हड्डी जुड़ जाती हैं, ठीक है। कूल्हे की जो हड्डियाँ टूट जाएँ, इसमें ट्रैक्शन लगा सकते हैं। छोटा मोटा फ्रैक्चर है रेमाए वगैरह का पेल्विस में, तो स्किन ट्रैक्शन विल बी सफिशियंट। उस पैर में खिंचाव लगा दिया, 3-4 किलो, 2 किलो का, 3 किलो का, तो 3-4 हफ्ते में वो काफ़ी हील हो जाता है।

0: लेकिन कूल्हे की हड्डी जो टूटी हैं तो उसमें ऑपरेशन की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऑपरेशन करके प्लेट लगाई जाए, स्क्रूज डाले जाएँ, या जैसे अभी बेदी जी का फ़ोन आया था, उनका इंटरकैप्सुलर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर था जो जिसमें जुड़ने की संभावना नहीं होती है, तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये था कि डॉक्टर साहब से कि जैसे हड्डी को मजबूत बनाने के लिए या जैसे लेंथ होती है हड्डियों की, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके अनुसार ही उनके बच्चों के कद्स होते हैं, या उसको बढ़ाने के लिए या कुछ मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम हड्डियों को?
0: हाँ देखिए, इसमें आपके क्वेश्चन में दो पार्ट हैं आपने, एक तो हड्डियों की मजबूती के लिए क्या किया जाए, दूसरा आप हाइट के बारे में पूछ रहे थे, हाइट कैसे इंक्रीज की जाए।
2: हाँ,
0: ठीक है ना, तो आप उत्तराखंड से हैं।
2: हाँ,
0: तो पहाड़ी लोगों की हाइट वैसी कम होती है।
2: हाँ, जैसे पेरेंट्स होते तो उन्हीं के अनुसार ही बच्चे होते हैं, लेकिन
0: तो नेचर ने ऐसा बनाया है।
2: अच्छा,
0: क्योंकि उन्हें पहाड़ों पर रहना है।
2: हाँ,
0: पहाड़ों पर रहने वाले जो बाकी भी जानवर भी हैं, पालतू जानवर भी हैं, वो भी ज्यादा हाइट वाले नहीं होते। ठीक है ना, वहां आपको जिराफ नहीं मिलेंगे, कैमल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कम हाइट वाले मिलेंगे। नेचर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि गिरें कभी तो कभी इन्हें चोट ना आए ज्यादा, ठीक है ना।
2: अच्छा,
0: तो हड्डियों की मजबूती के लिए तो सबसे बढ़िया कैल्शियम है, जिसके सोर्सेज हैं ही हमारे पास, दूध दही पनीर, विटामिन डी है ही, विटामिन डी के सोर्सेज हैं सूर्य की रोशनी, एग और फिश। ठीक है,
2: ठीक है, ठीक है।
0: और ये सब चीज़ें आप ये ना सोचें कि ये सब खाना पीना मुंह में डाल लिया हमने, पच गया तो हमारी हड्डियां मजबूत हो गई। मजबूती के लिए एक्सरसाइज व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो कैल्शियम हड्डियों में जाके और हमारी। अब रही बात, आपने जो कहा था जो हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल चीज़ इतना ध्यान रखें कि विटामिन डी कैल्शियम अच्छा रहे। जब बच्चा लंबा हो रहा है, जब उसकी हाइट गेन हो रही है, वो गेम्स खेले, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसी चीज़ें खेलने से थोड़ी हाइट विटामिन डी लेते हैं तो अच्छी निकल आती है। लेकिन जो हेरिडिटरी है किसी का, जो हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, कोई ऑपरेशन की संभावना है, तो ऐसा नहीं कहूँगा नहीं है, तो कई ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एलिजा राव होता है, एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के हम हाइट धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है, साल तक चलने वाला प्रोसेस है। कभी टांग की हाइट लंबी करेंगे, एक फिर उसके बाद थाई की हाइट लंबी करेंगे, तो उसमें भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक कर सकते हैं। अगर हम पैरों की हाइट ज़्यादा लंबी कर दें और स्पाइन की हाइट कम है तो मिसमैच भी हो जाता है, देखने में भी सही नहीं लगता है। ठीक है, फिर हार्मोन थेरेपीज़ भी बच्चों में दे देते हैं, ग्रोथ हार्मोन दे दिया ताकि उसकी हाइट बढ़े, उसमें भी थोड़ा सा खतरा रहता है। ग्रोथ हार्मोन जब देते हैं तो सेक्स हार्मोन जो है वो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बच्चे में, जो बच्चे अभी मैच्योरिटी अटेन नहीं करे हैं, जिनकी उम्र 13-15 साल से कम है, उसमें ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह के भी बच्चों का डॉक्टर देख के या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देख के इस बारे में सोच सकता है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये है जोया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय गुड फूड टू मेक ब्रोकन बोन टू क्योर इटसेल्फ?
3: See, the bones are made up of the protein as well as the calcium. So the high protein intake means if you are a vegetarian, take a lot of pulses, cereals, sprouts, cheese, milk and milk products. And in the non-vegetarian, you can take the egg along with the non-veg also. Along with the long, green leafy vegetables, and exercises and all these things will help in to strengthen the bone.
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम, दोनों डॉक्टरों को गुड आफ्टरनून। महिलाओं में कमर का दर्द एक आम बीमारी है, वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती अक्सर महिलाएं, तो दोनों डॉक्टर इस पर क्या कहेंगे? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: ये सही कहा आपने, महिलाओं में कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है थोड़ी मर्दों की अपेक्षा में थोड़ी अधिक ही होती है। ठीक है, कमर दर्द के कई कारण हैं हमारे।

0: पेशाब की जगह का इन्फेक्शन या फिर गर्भाशय की कोई भी दिक्कत हो, इवन किडनी का भी जो पथरी है या इन्फेक्शन है वो भी सब कमर दर्द करती है, ठीक है ना। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो लेडीज़ में है काफ़ी, इसके बारे में एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के ये रूल आउट कर लें, नहीं है तो फिर आता है कि हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जिसके जिससे कमर दर्द होती है, तो उसके लिए कमर के व्यायाम करना, सही पोस्चर बैठने का होना, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनसे ठीक रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कई बार है बच्चे हैं या बड़े हैं स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, वो गिर गए, उनकी फिंगर्स पे लग गए, शोल्डर्स में लग गई, समझ में नहीं आता फ्रैक्चर है या दर्द है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें और इमीडिएटली क्या करें?
2: बच्चों में खेलते वक्त चोट लग जाना और फ्रैक्चर्स हो जाना एक आम सी बात है। इस कंडीशंस के अंदर अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे हम चमड़ी कटती है, चोट लगती है, खून बहता है, इस कंडीशन के अंदर खून नहीं बहा पर अंदर तो खून बहा ही, जिसकी वजह से वहाँ पर नीलापन आ जाना, या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो वहाँ पर टेढ़ापन आ जाना, ये सब चीज़ें हैं जो सस्पेक्ट करती हैं फ्रैक्चर है। इस कंडीशंस के अंदर सबसे पहले हमें कोल्ड वाटर फॉर्मेटेशन करना चाहिए, आइस पैक लगानी चाहिए, ना कि हॉट वाटर फॉर्मेटेशन करना चाहिए। उस कोल्ड वाटर फॉर्मेटेशन से, आइस पैक से सूजन कम रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ पे उस चीज़ को हम इमोबिलाइज करें बाई किसी लकड़ी के डंडे से, इंची से, और इन कंडीशन जैसे लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर्स है आपको डंडे से बांध दें, अगर नहीं है तो दूसरे लिम्ब के साथ ही किसी कपड़े से बांध दें, और उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ पे एक्सरे करके डॉक्टर की आगे सलाह लें। और अगर फ्रैक्चर है तो आमतौर पर जैसे पहले बताया था कि बच्चों के अंदर फ्रैक्चर्स के कंडीशन में प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, पर कुछ एक कंडीशन जैसे एल्बो फ्रैक्चर्स, जो फ्रैक्चर नोटोरियस फ्रैक्चर्स हैं, जो कई बार प्लास्टर लगे लगे भी बाद में अंदर ही अंदर टेढ़ापन वापस आ जाता है, इन कंडीशंस के अंदर भी हम कई बार चांस लेते हैं प्लास्टर करने के बाद हम सीरियल एक्सरेज लेते हैं, मींस एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद एक्सरेज लेते हैं, ताकि ये देखने के लिए कि प्लास्टर लगा तो दिया पर प्लास्टर लगे लगे भी हड्डी अंदर गलत ढंग से तो नहीं जुड़ रही। तो अगर फ्रैक्चर्स, अगर एक्सरे करने के बाद फ्रैक्चर्स नहीं हमें नज़र आता, इट मींस पेशेंट को सॉफ्ट इंजरी है या लिगामेंटस इंजरी है, उस कंडीशंस के अंदर हमको गर्म पट्टी या स्प्रिंट बांध देते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: नमस्ते मैम, नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार जी,
3: संजीव कुमार चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ सर।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न मैम ये है कि एक दो दिन से ना मेरे जो जॉ की हड्डी है, जबड़े की हड्डी पे बहुत दर्द हो रहा है राइट साइड पे।
0: ठीक है जी, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी ना? कोई चोट नहीं लगी?
3: नहीं सर, कोई चोट नहीं लगी।
0: आपके अंदर के दांतों में तो नहीं कोई सड़न या कीड़ा टाइप इस तरह से?
3: नहीं, नहीं सर।
0: कई बार मोलर टीथ के कारण भी यहाँ पे दर्द होती है, बाकी हाथों पैरों के जोड़ों में कोई सूजन दर्द ऐसा नहीं?
3: नहीं सर।
0: और क्योंकि आपको बड़े थोड़े टाइम से ही है, दो दिन से ही है ये अभी?
3: हाँ, पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सर।
0: हाँ,
3: आज तो मेरे से खाना भी नहीं खाया गया।
0: हाँ, तो अब इसमें कई चीजें हो सकती हैं, जैसे एक वायरस इन्फेक्शन हो जाता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैरोटिड में, कई बारी मम्प्स भी हो जाते हैं, इस कारण भी जो है ये दर्द हम जॉ की तरफ समझते हैं, तो इस बारे में भी किसी डॉक्टर को दिखा लें आप, MBBS डॉक्टर हो या MD मेडिसिन डॉक्टर हो, वो देख लेगा। रही बात आपके जो जोड़ होता है, जबड़े का जोड़ होता है जो,
3: वही दर्द हो रहा है,
0: अगर वहाँ दर्द है तो कई बार गठिया रोग का भी लक्षण होता है ये, इसमें हम यूरिक एसिड, RA फैक्टर, ये सब चीज़ें,
3: यूरिक एसिड की मेडिसिन लेता हूँ सर मैं।
0: हाँ, तो एक गठिया रोग है आपको। खैर चलो, यूरिक एसिड की वैसे ही कोई ज़्यादा पसंदीदा जगह नहीं है, पैरों की तरफ ज़्यादा दर्द करता है यूरिक एसिड, लेकिन आपको जबड़े में हो रहा है तो फिर भी एक बारी एक्सरे करके देख लेंगे, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल लें। बहुत सारे लोगों को गलत ढंग से TV देखना, मोबाइल देखना, किताबें पढ़ना, हाथ अपनी हथेली का ऐसा जोर पड़ जाता है जबड़े पे पढ़ते लिखते वक्त, तो उससे भी होता है। ठीक है
1: जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को रिब बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है?
0: रिब्स बोन मैडम, ये मूवमेंट वाली बोन है, इंसान जब सांस लेगा तो एक मिनट में लगभग 18 बार वो बोन हिलती ही रहेगी, वो कभी उसके मूवमेंट आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना।

0: तो मगर एक अच्छी बात है कि इसमें अच्छी हीलिंग हो जाती है। तो 90% से भी ज़्यादा केसेस में रिब बेल्ट दे देते हैं हम लोग, जैसे कमर की बेल्ट आती है, ऐसे पसली की भी बेल्ट आती है, उससे इमोबिलाइज हो जाता है और वो हील हो जाता है, और अच्छा खान पान, ये हीलिंग इन चीज़ सब चीज़ों से ठीक हो जाता है। बड़े रेयर केसेस में रिब का कोई शार्प फ्रैगमेंट टूट के अंदर फेफड़े के इस पे चुभ जाता है, तो उसमें सांस में दिक्कत आ जाती है, तो इमरजेंसी वाली बात भी बन जाती है, उन केसेस में ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। कई की केसेस में रिब में जोड़ने के लिए छोटी छोटी प्लेट्स एंड वायर्स भी आती हैं, उनसे भी जोड़ी जाती हैं, पर 90% केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है।
1: जैसे कि आज हम बात करें फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट्स पर, तो क्या कुछ ऐसी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं कि जिसे जल्दी क्योर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए?
2: मैम, सर्जरी जो होती है वो फ्रैक्चर हीलिंग को डिले करती है। हमारा पर्पस है हड्डी को जोड़ना, हड्डी को जोड़ना। फ्रैक्चर सर्जरी तब करी जाती है जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को हम नॉर्मल पोजीशन में अलाइनमेंट में नहीं ला पाते प्लास्टर की वजह से। अदरवाइज सर्जरी हमेशा फ्रैक्चर हीलिंग को डिले करती है, क्योंकि सर्जरी के अंदर जब स्पेशली हम सर्जरी में जब फ्रैक्चर को खोलते हैं प्लेट वगैरह लगाने के लिए, जब हड्डी टूटने के बाद अंदर जो खून इकट्ठा होता है जिसको हम हिमेटोमा कहते हैं, वो हड्डी जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। लेकिन जब हम सर्जरी करते हैं प्लेट वगैरह लगाते हैं तो हिमेटोमा ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसको डेट डिलेज द हीलिंग। बट इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आजकल हम नेलिंग करते हैं, जिसको हम दूरबीन वाला ऑपरेशन भी कह लीजिए। उसमें हम दूरबीन के द्वारा हड्डी को बिठा के खोखली हड्डी के अंदर अंदर रॉड डाल देते हैं, और जिस जगह पे फ्रैक्चर होता है उस जगह पे इंसीजन नहीं दिया जाता, और जो अंदर हिमेटोमा कलेक्ट होता है वो ड्रेन आउट नहीं होता, तो इससे हीलिंग डिले नहीं होती। सो दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स, यहाँ पे हम फ्रैक्चर्स को ट्रीट करते हैं बाय द इसको कहते हैं इंट्रामेडुलरी नेलिंग या इंटरलॉकिंग नेलिंग कहते हैं। बट इन केस ऑफ द हिप फ्रैक्चर्स, जिसके अंदर यहाँ पे 60 साल से उम्र ज़्यादा होती है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है, इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है, यहाँ पे हड्डी को जुड़ने की संभावना बहुत कम होती है। अगर जुड़ भी जाए तो हड्डी में चूल्हे का खून का दौरा ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उस कंडीशंस के अंदर हम 60 साल की उम्र के बाद और जोड़ के अंदर का फ्रैक्चर, जिसको इंट्रा कैप्सुलर कहते हैं, उसमें जोड़ को बदल कर नया जोड़ डाल दिया जाता है। अगर 60 साल से उम्र से कम हो तो उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं।
1: तो फ्रैक्चर या के बाद जो जैसे प्लास्टर है वो खुल जाता है, या फिर ऑपरेशन के बाद का, उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है?
0: ये सारी चीज़ें डॉक्टर के एडवाइस से ही फॉलो होनी होती हैं। ज़्यादातर केसेस में तो हम प्लास्टर निकलने के बाद जो लिंब है हाथ या पैर, वो स्टिफ मिलेगा हमें, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी का एक कोर्स जरूर करना पड़ता है। वो डॉक्टर गाइड करता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका, कि फिजियोथेरेपिस्ट इसको कि कौन कौन सी देनी है, कैसी सिकाइयाँ करनी है, कितनी मूवमेंट किस किस रेंज में लानी है। ज़्यादातर केसेस में 3-4 हफ्ते में फुल मूवमेंट आ जाती है और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो जैसे फिजियोथेरेपी की आपने बात करी, तो फिजियोथेरेपी या व्यायाम कितना ज़रूरी है, और ये रिहैबिलिटेशन में कितना समय लगता है?
0: देखिए, हमारी इसमें कहावत है कि सक्सेस ऑफ ए गुड ऑर्थोपेडिक सर्जरी लाइज इन द हैंड्स ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट। हम कितने भी अच्छे से हमें जोड़ दें हड्डियाँ, जोड़ उसकी अच्छी मूवमेंट के लिए, अच्छी वर्किंग में आने के लिए अच्छा व्यायाम बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापा पैरों से आता है, क्या सही है? क्या करें जिसे एजिंग लेट आए बोन्स को फिट रखने में? राखी फ्रॉम किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर।
2: राखी जी, देयर इज नो मेडिकेशन इन द वर्ल्ड एज सच जो एजिंग प्रोसेस को रोक सके। एजिंग हैज टू अकर विद टाइम इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, टू स्ट्रेंथन द बोन, यस, वी कैन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ द कैल्शियम and proteins and good amount of exercises along with the sun exposure and the vitamin D.
1: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच एन एजुकेशनल प्रोग्राम, डॉक्टर अनिल कालरा गुरुग्राम से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी की, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में, जैसे कि आपने बताया था, तो ये हमें कितना लेना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए जिससे हम अपनी बोन्स मजबूत रख सके? कई बार होता है कि कहते हैं कि बोन्स वीक हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कमज़ोर बोन्स हैं, इसलिए चटक चटक कई बार आवाज़ भी आती है।
0: नहीं, ये जो आवाज़ आती

0: लगती है ये अपने जो कहते हैं वो, ऐसा नहीं, कई बार बहुत सारी तो जो जोड़ों में कड़ाके निकालते हैं, जॉइंट की मूवमेंट्स आती है, वो तो साइनुअल फ्लूड में एयर बबल्स बनते हैं उसके कारण होती है। लेकिन जो दूसरी आवाज़ें आती हैं, जो एब्नॉर्मल साउंड्स हैं, वो ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, जोड़ घिस के हड्डी बढ़ जाए, सब इन कारणों से आती हैं। तो उसके इलाज हैं, जैसे कि ब्रेसिस पहन लो, सिकाई करें, कई की केसेस में जहाँ जोड़ों में ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, पेन है, इमोबिलिटी, ज़्यादा चला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, एक्सरे में डॉक्टर देख रहे हैं जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गई है, तो ऐसे केसेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जहाँ नहीं कर पा रहे हैं उनमें ब्रेसिस पहना के एक्सरसाइज करा के काम चलता है।
1: अच्छा, कई बार होता है कि जैसे कोई बच्चा है, कहते हैं कि इसकी बोन्स कमज़ोर हैं, किसी की कहते हैं बोन्स हैवी है, तो क्या डिफरेंशिएट है ये?
0: नहीं, बोन कमज़ोर और हैवी का ऐसा नहीं है। ज़्यादातर तो कॉर्टिकोमेडुलरी रेशियो एक्सरे में देख के डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है भाई, इसमें बोन जो है थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, जिसमें कॉर्टेक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसमें मेडुला ज़्यादा वाइड है, उसमें बोल देते हैं। डॉक्टर विनय, आप कुछ बताना चाहिए इस बारे में?
2: ये देखो, जो बोन्स वीक हैं या स्ट्रांग हैं, बल्कि मुझे बड़ा पैराडॉक्सिकल है कि अमीर माँ बाप के बच्चे घरों में रहते हैं, सन एक्सपोजर नहीं होता, तो उनमें विटामिन डी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रिकेट्स ज़्यादा होता है। गरीब बच्चों के माँ बाप के बच्चे, झोंपड़े के बच्चे बाहर खेलते हैं, धूप में रहते हैं, विटामिन डी एक्सपोजर ज़्यादा होता है, चाहे वो दूध कम पीते हैं लेकिन वो उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, विटामिन डी एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो उसमें रिकेट्स के चांसेस कम रहते हैं।
0: कम रहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि फ्रैक्चर होने से ठीक होने तक की जर्नी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहले तो उसे इमोबिलाइज किया जाए, उसे मूवमेंट कम करी जाए, ताकि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स इधर उधर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को ना डैमेज करें, नर्व्स, मसल एंड बोन्स को डैमेज ना करें। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर ने इलाज बताया, भले प्लास्टर बताया है तो प्लास्टर की पूरी केयर रखें, प्लास्टर के अंदर गीला ना करें, पानी ना जाए, एक्सरसाइज जो बताई है वो बराबर करें, डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ, कैल्शियम, विटामिन डी बराबर लीजिए। अगर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बताया आपके, तो ऑपरेशन के एडवाइसेस अलग हैं, इस किस फ्रैक्चर में वेट देना नहीं है, किसी में एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हीलिंग अच्छी आनी आनी है।
1: एक मैसेज है हमारे पास, एक कॉल है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इतने हम मैसेज ले लेते हैं। ये पूछते हैं कि फ्रैक्चर हीलिंग में मेडिकली हमें कितना समय लगता है?
0: फ्रैक्चर हीलिंग मेडिकली, तो फ्रैक्चर हीलिंग टेक्स 1 ईयर टू हील, ठीक है ना। एक कोई भी हड्डी टूट जाए, 1 साल उसे जोड़ने में, माइक्रोस्कोपिकली उसे 1 साल लगता है जोड़ने में। वो अलग बात है कि हीलिंग के हमें जो साइंस हैं वो एक्सरेज में 1-2 महीने में, 3 महीने में अच्छे दिख जाते हैं, वो तब हम पेशेंट को बोल देते हैं कि नाउ यू कैन स्टार्ट बियरिंग वेट, या मूवमेंट अपनी अच्छी करना शुरू कर सकते हैं वो। पर किसी में अगर ऑपरेशन किया है, प्लेट, रॉड, स्क्रू डालना पड़ी है डॉक्टर्स को ऑपरेशन करके, तो वो निकाली तभी जाएं जब वो फ्रैक्चर हील हो जाए अच्छा, जो कि 1 साल के बाद होता है।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: जी ओम शांति।
1: ओम शांति जी, आपका नाम, आप कहाँ से
3: बीबी
1: कॉल कर रहे
3: गौतम
1: हैं?
3: मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ, मेरा कहना है कि ऐसा माना गया है कि घुटने में कोई चोट लग जाए, कोई ऑपरेशन करना पड़े, तो वो 100% ठीक नहीं होता। अगर वो डॉक्टर को भी चोट लग जाए तो पूरी तरह ठीक नहीं होता, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया विस्तार से बताएं।
0: हाँ देखिए, ऐसा है कि घुटने की चोटें, मैं वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, मैं 2 प्रकार आप मान के चलिए। एक तो जिसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है, सिर्फ मेनिस्कस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, या मेनिस्कस गए हैं जो रस्सी बोलते हैं, ठीक है ना, ACL, PCL, मेनिस्कस जो खेल कूद में ज़्यादा टूटते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल या कोई भी गेम्स खेलें तो मेनिस्कल इंजरी हो गई, क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो गई, तो ये ज़्यादातर आपस अपने आप जुड़ते नहीं, क्योंकि इनमें खून का प्रवाह नहीं होता। जिसमें खून का प्रवाह नहीं, वो चीज़ नेचुरली हील होगी नहीं। ऑपरेशन करके हम भी वो उसे जोड़ेंगे नहीं, हम उसे रिप्लेस करेंगे। कोई मेनिस्कस है।

0: या क्रूशिएट टूटा है तो वो टेंडन से, लिगामेंट से रिप्लेस किया जाएगा। तो और रिप्लेस करने के बाद फिजियोथेरेपी करके पूरा आप नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल अपनी एफिशिएंसी पे, वर्क पे आ सकते हैं कुछ महीनों में। ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी आती नहीं। अब दूसरी इंजरी हुई फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स में भी ऑपरेशन करके आप अच्छी हीलिंग एक दो महीने में अच्छी आप कर सकते हैं। ये कहना गलत है कि पूरी ठीक नहीं होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, अलग अलग फ्रैक्चर्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि अगर कोई घर में है, काम कर रहा है, फिसल गया, कोई रास्ते में जा रहा है, उसके एक्सीडेंट हो गया, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है?
2: डिफरेंशिएट का मतलब, जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लो एनर्जी ट्रॉमा एंड द हाई एनर्जी ट्रॉमा। लो एनर्जी ट्रॉमा बेसिकली वहाँ होता है जब हमारी बोन्स वीक होती हैं, और आमतौर पे जैसे इस आम जब बोन्स वीक होती हैं, कलाई का फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर और हिप का फ्रैक्चर, दीज आर कॉमन फ्रैक्चर्स विच अकर स्पेशली इन द फीमेल्स बिकॉज ऑफ द इन द मेनोपॉज, बिकॉज द हार्मोन डेफिशिएंसी, फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें फ्रैक्चर होने के लिए चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब रोड पर जाते हैं तो जैसे हाई एनर्जी ट्रॉमा, वह फ्रैक्चर कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है।
1: तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
2: हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जैसे पहले बताया, हड्डियां जो हैं हमारी कैल्शियम से बनी हैं और प्रोटीन से बनी हैं। तो कैल्शियम के लिए हमें दूध और दूध की बनी चीज़ें विदाउट फैट के, अगर हम पनीर इज आल्सो नॉट सो गुड, डबल टोन दूध पीना चाहिए, उसी के बना पनीर लेना चाहिए, उसी के बने दूध और छाछ, पनीर दही और छाछ लेनी चाहिए। बाकी रही बात प्रोटीन की, वेज लोगों के लिए जैसे है सोयाबीन है, प्रोटीन दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, ये सब लेने चाहिए। और नॉन वेज लोगों के लिए एग है, मीट लेनी चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइजेज, सन एक्सपोजर ये जरूर कर लेना चाहिए। और हमें बाकी जो को मॉर्बिड कंडीशंस लाइक द डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, और अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ऐड ऑन करते हैं। इन चीज़ों से हमारी हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाती हैं और आगे हमारी टेंडेंसी रहती है लो एनर्जी ट्रॉमा के साथ भी फ्रैक्चर्स होने की। जैसे मंदिर में जाते हैं ओल्ड एज, वहाँ फिसल गए, घर के अंदर पोछा लगाया वहाँ फिसल गए, जब वेरी मोड कॉमन मोड ऑफ इंजरीज हैं, ओल्ड एज पीपल सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम के अंदर गिर जाते हैं, दे डेवलप फ्रैक्चर्स।
1: तो आप बच्चों को और बुज़ुर्गों के लिए क्या मैसेज देंगे कि जिससे वो अपनी हड्डियों को की सुरक्षा कर सके, और बच्चे जिनसे उनकी ग्रोथ अच्छी हो और बुज़ुर्ग जो फिट रहें?
0: देखो, बोन हेल्थ के लिए तो सबसे खान पान का ही खास ध्यान रखें, एक्सरसाइजेस करें, सनलाइट एक्सपोजर रहें, तो इससे बोन्स आपकी अच्छी रहेंगी। जो बोन्स के लिए ठीक नहीं है, फ्रैक्चर हीलिंग के लिए भी जो ठीक नहीं है मैं बताना चाहूँगा, एक तो हो गया पेन किलर्स, दर्द की दवाइयाँ जो हैं दे डिले दी बोन हीलिंग। तो दर्द की दवाइयाँ जितनी कम हो सकें लेना ना लें, जहाँ लेना ही पड़े वहाँ अल्ट्रासाउंड जैसी दवाइयाँ लें, और इन चीज़ों का खास ध्यान रखें तो बोन हेल्थ आपकी सही रहेगी। और टोबैको का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, टोबैको आल्सो डिलेज द हीलिंग।
1: तो डॉक्टर विनय, जैसे कि हमारा जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देंगे?
2: श्रोताओं के लिए मैं मैसेज यही है कि जैसे पहले ऑलरेडी बता दिया गया है हाउ टू मेंटेन ए गुड हेल्थ ऑफ द बोन्स, वो तो आपको बता ही दिया है। मेडिकली एडवाइस आपको ये देना चाहूँगा, जब भी कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है फ्रैक्चर्स के अंदर ऑपरेशन करवाने की, उसको फॉलो करें। ये अब हम ना मान के चलें कि एवरी फ्रैक्चर रिक्वायर्स प्लास्टर ओनली, कि उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। कई सारे फ्रैक्चर्स में जैसे पहले बता दिया गया है, फ्रैक्चर्स ऑपरेशन किए बिना ठीक नहीं होते। या दूसरी बात ये है कि जब कुछ लोग सलाह ना मानते हुए किसी पहलवान के पास या मसाज क्वैक के पास चले जाते हैं, वहाँ मसाज करवाते हैं, स्पेशली एट द एल्बो जो कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कर देते हैं और नुकसान कर देते हैं। जहाँ प्लास्टर करने के बाद कुछ देर बाद आते हैं, 6 महीने बाद, साल बाद आए तो हड्डी टेढ़ी जुड़ चुकी होती है, तो जो कि आगे चल के टेढ़ी हड्डी जुड़ने के कारण बॉडी की सारी बायोमैकेनिक्स को ख़राब करती है। वहाँ पर फिर हड्डी को काट कर सीधा करना, प्लेट लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
1: और डॉक्टर अजय, आप क्या मैसेज देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: मेरा ये कहना है, अच्छे से अपना एक्सरसाइजेज और खान पान का ध्यान रखें, डॉक्टर्स की एडवाइस पूरी फॉलो करें।

0: इसमें कोई दिक्कत नहीं।
1: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आज की चर्चा से फ्रैक्चर से जुड़े आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ध्यान रखिए, हड्डियां हमारे शरीर का आधार हैं, सावधानी दुर्घटना से बचाती है और समय पर उपचार जल्द स्वस्थ होने का रास्ता दिखाता है। किसी भी चोट को हल्के में ना लें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर अजय शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जन और डॉक्टर विनय सिंगला ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आप दोनों का कार्यक्रम में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthair@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: वेडनेसडे, ट्यूसडे,
1: अच्छा।
0: मंडे, संडे।
1: ओ वेरी गुड भाई, वेरी गुड, क्या बात है, मुंडा शाह गया भाई, बहुत ही शाह गया। मैं कहना जोरदार ताड़ियां होनी चाहिए, क्या बात है जी, सच्ची अंग्रेजी दी क्लास तुसी इत्थे चला दित्ती है, ते आई फीलिंग वेरी मच प्राउड फॉर यू संदीप, एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्ले योर सॉन्ग। सो विच सॉन्ग यू कम फ्रॉम विद योर लाइक वॉट एंड वॉट?
0: प्लीज प्ले द सॉन्ग रंजीत बावा, माई
1: माई
0: माई सरदार जी,
1: माई सरदार नहीं है। या आगे, बट नेक्स्ट।
0: अंग्रेजी बनती नहीं पई।
1: अंग्रेजी बनती नहीं पाई क्योंकि मार्टर अंग्रेज से होते, अगे कहे दी अंग्रेजी नहीं चलती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन संदीप, आई ऑल्सो टॉट अंग्रेजी टू अंग्रेज, मैं अंग्रेजा नु भी अंग्रेजी सिखाई, वह भी इंडिया आके कहते होंगे सी, हेलो मिस्टर अंग्रेज सिंह, तुम क्या करता है? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थोड़ा गाना प्ले करन लग गया, तुसी अंग्रेजी की क्लास बहुत वधिया निभाई, थैंक यू जी, थैंक यू। सो मास्टर अंग्रेज सिंह इज वेटिंग फॉर यू, नंबर, फोन नंबर, इफ यू वॉन्ट टू कम एंड एंजॉय योर शो इन पंजाबी एंड मिक्स विद अंग्रेजी, नंबर इज 01812342174, कम एंड जस्ट ट्राई योर इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मास्टर अंग्रेज सिंह।

0: आई नॉट डू लेट, लेट डू डज डिड है, जिदा मर्जी समझ लो मार्टर अंग्रेज सिंह दे कोलों। सो अगले स्टूडेंट साढ़े प्रोग्राम च आ गए ने जी, आओ कर दे गलबात। हैलो,
1: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। ये कड़ी गुड मॉर्निंग भाई।
1: आई एम प्रवीण कुमार, गोपाल नगर, न्यू जलंधर जी।
0: प्रवीण कुमार, गोपाल नगर, जलंधर। सब कुछ ठीक है, पर आ जड़ी गुड मॉर्निंग है ये मैनू समझ नहीं आई।
1: ए मैं तुहाडे को ट्यूशन पढ़ता पिया, ये लेट हो गया 2 मिनट।
0: गया, वेरी गुड, बट ए गुड ईवनिंग है। वैसे मैनू एक स्टूडेंट आया सी, मैनू कहिंदा मास्टर जी गोडा मॉर्निंग। मैं कहा हैं ये की हुंदा गोडा मॉर्निंग? कहिंदा जी जिहड़ी सवेरे सवेरे बोलदे आ। ओए मैं कहा ओए उहनू गुड मॉर्निंग कहिंदे आ, गोडा मॉर्निंग नहीं कहिंदे। एक अजकल दे स्टूडेंटा डुंटा का इत्थे पता लगता है ना, मास्टर ना खैबड़ भी पैंदे। चलो कोई गल नहीं, प्रवीण आया साढ़े कोल, ते की पुछिए ते केड़ा सवाल ना पुछिए। हैं अच्छा, आ तुहानू अंग्रेजी च जनवरी फरवरी आउंदा है?
1: हाँ जी,
0: लै जनवरी फरवरी, फिर तुसी उल्टा सुनाउणा, ठीक है जी? उल्टा मतलब दसंबर तो पिछों शुरू हो जाओ जनवरी तक।
1: दिसंबर, नवंबर, ए
0: ए केड़ा महीना होया? ए
1: नवंबर,
0: हाँ नवंबर, दसंबर।
1: दिसंबर,
0: ये तो ही अगे नू चल गए, तुहानू क्या पिछे नू आना।
1: शुरू आई है। चलो
0: हाँ
1: ठीक है जी, अपने अक्टूबर,
0: अक्टूबर
1: अक्टूबर आ गया,
0: आ
1: अगला
0: गया,
1: नवंबर आ गया,
0: अक्टूबर तो बाप की आया,
1: नवंबर,
0: नवंबर ते अगे चला गया। मैं तुहानू कही जाना पिछे नू आना, तुसीं अगे नू भज्जी जाने, गलत गल आ।
1: दिसंबर आ गया जी,
0: केड़ा आ गया?
1: सितंबर,
0: अच्छा चलो आ गया सितंबर। सितंबर तो भी पिछे आ जाओ, होर केड़ा आ गया?
1: पिछे आ गया जी, मार्टर
0: मार्टर अंग्रेज सिंह
1: जी,
0: सोटी लै के।
1: मार्टर जी।
0: दसो भी सितंबर दे पिछे की आया?
1: सितंबर दे पिछे आ गया अक्टूबर।
0: अक्टूबर। रहन दो तुही, मैं अगले कॉलर तो पुछांगा, तुही ते वो हद ही कर दिती है स्टूडेंट वाली। दसो हैं
1: ओ मैं न्यू आया ना,
0: न्यू आया,
1: स्टूडेंट
0: गलत
1: आया।
0: गल है। देखो सारे आंदे आ कि अम्मा अब की कहते होंगे इन्हों मंथ दे नेम ते कोई

21 जुलाई 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार ibps.in वैबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों एक बारी वैबसाइट का पता फिर नोट कर लवो, ibps.in ये वैबसाइट है, तो इस ते जाके तुसी अपना फॉर्म भर सकते हो। चोन प्रक्रिया गल करिए जिहड़ी प्रीलियम्स परीक्षा 29 अगस्त नूं होवेगी, अते मेन्स जिहड़ा एग्जाम है रिटन एग्जाम वो 1 नवंबर नूं, ते उस तो बाद जेकर तुसी इन्हां एग्जाम्स नूं क्वालीफाई कर जांदे हो तां थोड़ी इंटरव्यू होवेगी। ते जेकर तुसी बैंकिंग सैक्टर दे विच स्पैशलिस्ट अफसर बनना चाहते हो तां जब्स मैनूं लगता है इस तो वधिया जिहड़ी ऑपरचुनिटी है शायद तुहानूं बाद दे विच देखण नूं मिलेगी।

FM 106.7 MHz से आकाशवाणी जालंधर द हाई रेनबो चैनल है, चल रहा प्रोग्राम लव यू जिंदगी। दोस्तों ये जड़ा समा है ना टी टाइम असं इसनों कह दें, शाम का वेला हों, सारे जने फ्री होंगे ने, कुछ लोग ऑफिस तो अपने घर आते हैं, कहते हैं पहले थोड़ी थोड़ी चाह हो जाए, फिर कहते हैं यार नहीं चाह के नाल कुछ खाने भी हो जाए, तो खाण के जेकर उही रूटीन दी चीज़ा बिस्कुट नमकीन खा के बोर हो गया तो कोई गल नहीं जी, नवी रेसिपीज़ आदि ने इस प्रोग्राम के भी। रेसिपी थोड़े वास्ते लैके आए जी पालक पनीर के पकौड़े। तुम कहो कि लो जी ये कड़ी नवी गल है भाई, बहुत खाधे आ खाधे हैं, ठीक है जी मान लिया खाधे होणगे, पर जिदा मैं दसन जा रहा शायद ना खाधे होण। सो जेकर तुसी भी हो गए हो प्याज वाले पकौड़ियाँ तो परेशान, तो तुसी बना सकते हो पालक पनीर के पकौड़े। करना की है जी, तुहानू चाहिए है पालक बरीक कटी हुई एक कप, पनीर कद्दूकस किया हुआ आधा कप, उस दे नाल ही बेसन एक कप और अदरक लसन का पेस्ट, हरी मिर्च, अजवाइन ते नमक स्वाद अनुसार। हुण तुसी करना की है जी, सारा कुछ मिक्स करके ना इहदा एक बैटर तैयार कर लेना, बैटर थोड़ा हार्ड होना चाहिए जिदा कि पकौड़ियाँ का होंदा ही है। सो उस सारिआं नूं बैटर नूं तैयार करके फिर तुसी तेल नूं जिहड़ा है वह गर्म करना शुरू कर देना, तो तेल गर्म हो गया उसके इसमें पाते जाओ पकौड़े की शेप के, अपने आप ही जोड़े ने बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े तल के तैयार हो जाएंगे। तो नाल ही तुसी इमली पुदीने की चटनी जी है इन्होंने पकौड़िया के नाल घर के ही बना के इंजॉय कर सकते हो। वैसे असी जिहड़े पालक पनीर वाले पकौड़े खाते हाँ वो असी इदा मतलब छोटा छोटा मतलब कद्दूकस करके शायद बहुत घट खाते हो, चलो खैर अगर तुसी इदा करके खाओगे तो ज़्यादा वधिया रहेगा। हाँ जी, पालक पनीर के पकौड़े के नाल नाल तुसी पालक पत्ता चाट के पकौड़े भी बना सकते हो, मतलब कि एक पालक का जिहड़ा पूरा पत्ता हुंदा है उसनू तुसी चंगे तरीके नाल धो के उसनू तुसी बैटर दे विच मिक्स करके तो उसनू एज इट इज़ ही पूरे पत्ते नू ही तुसी अगर फ्राई कर लो तेल दे विच तो उसनू भी शाम के स्नैक्स के रूप में खाधा जा सकता। मैं कहा देखो जनाब कितना वधिया टेस्ट आएगा। सो मैं कहा जी अलग अलग तरह के शौक ने, कुछ खाण दे, कुछ पीण दे, कुछ बनाउण दे। सो जेकर तुहानू भी है कुकिंग का शौक तो जो मैं रेसिपीज दसियां ने उन्हां नू तुसी इस्तेमाल करके बनाओ जी फिर कोई शाम की वधिया डिलीशियस जी चीज़ चाह दे नाल खाण पीण नू। उन्नी देर लई मैं प्ले करता थोड़े वास्ते सज्जन अदीप की आवाज़ च गाया हुआ ये ट्रैक।

नमस्कार, शाम दे बज गए ने 7 ते पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड सीबीएसई की 27 मार्च की मुलांकन योजना नूं चुनौती देने वाली पटीशन ते सुनवाई करन लई सहमति दित्ती है। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत बिट्टू ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने पंजाब का दौरा करेंगे ते जलंधर समेत सूबे विच कई महत्वपूर्ण प्रोजैक्टां दा उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय महिला कमिशन ने राजस्थान के श्री गंगानगर में 13 साल नाबालग लड़की नाल होए सामूहिक जबरजना अते मनुखी तस्करी के मामले च नोटिस लिया। पंजाब ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मनुखी अधिकार कमिशन की सफाई कामों तो सुरक्षा उपकरणों तो बिना सीवरेज सफाई करवाने वाले करवाने के मामले के मोहाली के नया गांव नगर कौंसल के अधिकारियों तो रिपोर्ट मंगी है। NRI मामलों के विभाग बारे ऑनलाइन NRI मिलनी का आयोजन मंत्री के अधिकारियों मिली शिकायतों से तुरंत कार्रवाई करने लिए कहा। पशु पालन मंत्री गुरमीत खुडिया वालों 30 जुलाई तक पशुधन का टीकाकरण करने के निर्देश दिए गए। अमरीका के संघी जांच ब्यूरो वालों पंजाब पुलिस के एक अधिकारी खिलाफ जबरन वसूली के बयान का नोटिस लेंद्या पंजाब पुलिस ने उसे तुरंत प्रभाव नाल लाइन हाजिर किया। पंजाब पुलिस ने अज अमृतसर 3 मुलजमान वालों 2 आधुनिक पिस्तौल अते 2 हथगोले बरामद किए। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जून महीने दौरान 6 वख-वख मामलों में रिश्वत लेंदे हुए 5 सरकारी अधिकारियों अते 1 प्राइवेट व्यक्ति को रंगे हाथी काबू किया है। अते मौसम विभाग वालों अगले 2 दिन पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ में भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट अते ओरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਐਫਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ।

हाँ जी नमस्कार आदाब सत श्रीकाल। मैं थोड़ा मित्र आरजे परविंदर ए आई आर एफ एम रेनबो एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दे जलंधर दे रेनबो चैनल दे उत्ते मैं थोड़ा मित्र आरजे परविंदर अज थोड़े नाल गल्लबात करन दे लई एक बार फिर तो हाजिर हाँ। एंड इनफॉर्मेशन का पिटारा, न्यूज़ का पिटारा, दैन उस तो बाद हुण जिहड़ी गल्लबात थोड़े नाल करन दा मौका जिहड़ा मिल गया ना भाई, इस तो बाद मूड पूरा चिल मोड ते हो जांदा। एंड जिन्हां कलाकारा बारे अज असी गल करनी ने वो भी साढ़े लिए बहुत ज़्यादा खास ने, साढ़े लिए बहुत वड्डा मुकाम रखते ने, जिन्हों याद करके उन्होंने फिल्मों याद करके उन्होंने अदाकारी याद करके एंड उन्होंने काम बारे जो असं सोचते हैं रूह अपने आप ही खिड़ जाती है। अज भी उन्होंने काम को याद किया जाता है, अज भी उन्होंने काम बोलता है और अज भी वह फिल्मों के चुने जाते हैं एंटरटेनमेंट परपज के लिए। उन्होंने डायलॉग्स अज भी लोकां नू मन पाउंदे ने। सो बहुत सारिया गल्लां करांगे अज इस प्रोग्राम दे विच। किहड़ा प्रोग्राम है जी तुहाडा सारिआं दा पसंदीदा जो कि 7:02 ते शुरू हो जांदा है ते बिल्कुल असी प्रोग्राम दे विच अपनी एंट्री दे चुके हां। मैं तुहाडा मित्र आरजे परविंदर एंड प्रोग्राम दे विच असी खिच के गल करनी है, टका के गल करनी है और ठोक ठोक के गल करनी है क्योंकि प्रोग्राम तुहाडे सारिआं दा फेवरेट है। एंड इस प्रोग्राम दे विच पता की हुंदा है, तुसीं बड़ा ही तरीके दे नाल इस प्रोग्राम नू सुणदे वी हो, आनंद वी लैंदे हो क्योंकि प्रोग्राम तुहाडे सारिआं दा पसंदीदा है। तो बिल्कुल प्रोग्राम दे विच असी खुल के गलबात करते हैं, खुल के असी इंजॉय करांगे फिलहाल एक गीत, दैन फिर उस तो बाद गीतां तो बाद गल्लां दा सिलसिला शुरू करांगे।

जी ये तो होना ही था, बिल्कुल होना सीखा, क्योंकि ऐसे बैठे हुए हैं जी FM 102.7 MHz तक आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल दे होते हैं एंड इंजॉय करो तुसी प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। तो ये होना ही सी कि असी तुहानू गाना सुनाइए, तुहानू अज जिन्हां बारे असी दसन जा रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच। असली नाम उन्हां दा हरनीत कौर, उन्हां दी अदाकारी दा लोहा अज तक स्टिल मनिया जांदा है। लंबे वक्फे तो बाद उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वापसी की एंड लोगों ने दोबारा उन्होंने पसंद किया, लोगों ने फिर उन्होंने दोबारा पसंद करदिया होया प्रवान किया। सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं करांगा, सीधा आने पॉइंट के उत्ते कहते भारतीय सिनेमा बॉलीवुड दी मशहूर अदाकारा नीतू सिंह जिन्होंने हुण नीतू कपूर किया जाता है, जीवन के फिल्मी सफर निजी जिंदगी बारे अज असी गलबात करते हैं। नीतू सिंह जी के बारे जेकर गल करिए उन्हों का असली नाम हरनीत कौर अजिही अदाकारा रही है जिन्होंने अपनी

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

वाह जी वाह, क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत गीत जिसने पहचान दवाई नीतू सिंह होना नो, जो कि अजकल नीतू कपूर होना दे नाम तो फेमस ने जी। अज भी इन्हों की फिल्म थिएटर दे जो लगते ने बहुत कमाल दा युग इन्होंने फेस किया जी। हुण इन्हां दी गलबात कर लैने शुरुआती दौर मुख अदाकारा वजो, जिवें कि रणधीर कपूर होना दे नाल इन्हां दी मूवी हुंदी है 1973 दे विच सी, जो कि बॉक्स ऑफिस दे उत्ते बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर सकी, पर उस साल एक आई फिल्म नासिर हुसैन होना दी ब्लॉकबस्टर फिल्म यादों की बारात दे सुपरहिट गीत लेकर हम दीवाना दिल विच एक छोटी जिही झलक अते डांस ने उन्हां नूं रातों रात नौजवानां दी दिलां दी धड़कन बना दिता। हुण इन्हां दे जेकर सफलता दे सुनहरी दौर की गल करिए 1974 दे विच 1974 तो लैके 1980 तक इन्हां ने राज कीता। 70 दे दहाके दे विच अध तक नीतू सिंह बॉलीवुड दीआं सब तो वध मंग वालीआं अभिनेत्रियां दे विचों एक बन गए। उन्हां ने उस समय सारे वड्डे सुपरस्टार जिवें कि अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जितेंद्र, राजेश खन्ना अते रिशी कपूर होणा दे नाल काम कीता। उन्हां दीआं कुछ यादगार फिल्मां कुछ इस प्रकार ने, दीवार 1975 दे विच, यशराज चोपड़ा दी इतिहासिक फिल्मां दे विचों एक उन्हां ने जिस विच शशि कपूर दी प्रेमिका दी भूमिका निभाई। उस तो बाद कभी कभी इस विच जेकर गल की जाए तो यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म उन्हां दी एक अदाकारी जिहड़ी इस दे विच सी उसनों बहुत ज़्यादा सराहिया गया। अमर अकबर एंथनी मनमोहन देसाई जी दी इस सर्वकालीन हिट फिल्मां दे विच जेकर गल की जाए तो उन्होंने डॉक्टर सलमा का किरदार निभाया सी, जो कि ऋषि कपूर की अकबर की प्रेमिका होंदी है। उस तो बाद फिल्म आती है काला पत्थर 1979 के, इस फिल्म दे विच बेहतरीन अदाकारा दे लई नीतू सिंह नू फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लई नामजद भी किया गया। उस तो बाद जो सब तो ज़्यादा हिट रहा इन्हां दी लाइफ दे विच ओह सी शशि कपूर, माफ़ करना ऋषि कपूर होना दे नाल इन्हां दी लाइफ स्टोरी, ऋषि कपूर दे नाल जोड़ी किवें बनी, प्यार दी कहानी किवें अगे चढ़ती है वह भी थोड़ा दसा। फिलहाल तुम बने रहो साढ़े नाल FM बैंड 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर के रेनबो चैनल पर।

0: बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा बम बम पढ़ के बोल बेटा खिड़की खोल बेटा बम बम चिका बम बम चिका बम बम।
1: हाँ जी क्या बात है जी, तुसी नज़ारा लै रहे जी 102.7 FM रेनबो ते मैं थोड़ा मित्र आरजे परविंदर एंड असी गलबात जिन्हां बारे कर रहे हैं जी ओह हैगे जी नीतू सिंह फिल्म इन्हां दी काला पत्थर जिन्हां बारे असी पहला गलबात की है जी। इस फिल्म दे विच इन्हां ने बेहतरीन अदाकारी लई नीतू सिंह नूं फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लई नामजद किया गया सी, नोमीनेट किया गया सी। उस तो बाद असी कहा सी कि गलबात करांगे ऋषि कपूर हुणां दे नाल जो जोड़ी इन्हां दी प्यार दी कहानी कहिंदे ने बॉलीवुड इतिहास दे विच जेकर सब तो हिट रोमांटिक जोड़ी ऑन स्क्रीन अते ऑफ स्क्रीन जोड़ियां दी जेकर गल की जाए तो ऋषि कपूर अते नीतू सिंह दा नाम सब तो पहला आउंदा है। इकट्ठे फिल्मों की जेकर गल की जाए तो दोवां ने इकट्ठे लगभग 12-13 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई जिस विच खेल खेल में रफू चक्कर जहरीला इंसान कभी कभी अमर अकबर एंथनी दूसरा आदमी अते झूठा कहीं का शामिल है। दोस्ती तो प्यार दे विच किस तरीके की इन्हां दी लाइफ स्टाइल दे विच चेंज आउंदा है वो तुहानूं दस्सदे आं। कहिंदे ने फिल्मों दे सैट तो दोवां दी दोस्ती होई हौली हौली प्यार दे विच बदल गई। ऋषि कपूर विच काफ़ी शरारतीपन सी जो कि नीतू सिंह नूं तंग करदी सी पर नीतू ने सबर अते साउ सुभा दे नाल उन्हां दा दिल जित लिया। कहिंदे ने कि विआह तों बाद अदाकारी तों संन्यास लै लिया नीतू सिंह जी ने। 22 जनवरी 1980 नूं नीतू सिंह ने कपूर खानदान दे चिराग ऋषि कपूर दे नाल विआह करवा लिया। उस तों बाद इन्हां ने फैसला लिया कि मैं ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 21 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੂੰਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਚੰਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ

नमस्कार, राधे वजगने 8 से पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सेकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड सीबीएसई की सताई मार्च की मुलांकण योजना को चुनौती देने वाली पटिशन से सुनवाई करने की सहमति दी है। केंद्रीय रेजर राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने पंजाब का दौरा करेंगे तो जलंधर समेत सूबे दे विच कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय महिला कमीशन ने राजस्थान के श्रीगंगानगर के 13 साल नाबालग लड़की नाल होए समूहिक जबर जनाह ते मनुखी तस्करी के मामले का नोटिस लिया है। पंजाब ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मनुखी अधिकार कमीशन ने सफाई कामियां तो सुरक्षा उपकरणों तो बिना सीवरेज सफाई करवाउण के मामले के मोहाली के अते नया गांव नगर कौंसल के अधिकारियों तो रिपोर्ट मंगी है। एनआरआई मामलों बारे विभाग ऑनलाइन अते एनआरआई मिलनी का आयोजन, मंत्री के अधिकारियों मिली शिकायतों से तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पशु पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां वालों विभाग को 30 जुलाई तक पशु धन का टीकाकरण के निर्देश दिए गए। इस दौरान लेंद्या पंजाब पुलिस ने उस अमरीका के संघी जांच ब्यूरो वालों पंजाब पुलिस के एक अधिकारी खिलाफ़ जबरन वसूली के बयान का नोटिस लेंद्या पंजाब पुलिस ने उस तुरंत प्रभाव नाल लाइन हाजिर किया है। पंजाब पुलिस ने अज अमृतसर के 3 मुलजमान तो 12 आधुनिक पिस्तौल और 6 हथगोले बरामद किए। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जून महीने दौरान 6 वख-वख मामलों के रिश्वत लेंदे हुए 5 सरकारी अधिकारियों और 1 प्राइवेट व्यक्ति को रंगे हाथी काबू किया है। मौसम विभाग वालों अगले 2 दिन लई पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के भारी मीह पैण बारे येलो अलर्ट और ओरेंज अलर्ट जारी किया। एसान हुण तक दी एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। हुण तुसीं सुणोगे अगला सिलसिलेवार प्रोग्राम एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर दे उत्ते।

नमस्कार, राधे बज गए 9 ते पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने तो बाद आस्ट्रेलिया लई रवाना हो गए ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अज कुवैत दे वली अहद शहजादे शेख सबाह अल खालिद अल सबाह नाल मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ते केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री मोहन नायडू ने देश भर के प्रमुख हवाई अड्डिया ते मुसाफर सहूलतां सुरक्षा प्रबंधां अते इमीग्रेशन प्रणालियां दा जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र अल नीनो दे मद्देनज़र पंजाब समेत होरना राज्यां विच स्थित ते नेड़ियों नज़र रख रहा है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों के जमा 440 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिता है। अमरीका और ईरान दरमियान तना फिर तो वधन कारण आज विश्व पद्धर से कच्चे तेल की कीमतों में 2% तो वधदा वाधा दर्ज किया गया है। केंद्रीय रेल राज मंत्री नवीन सिंह बिट्टू ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने पंजाब का दौरा करेंगे और जलंधर समेत सूबे में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। पंजाब के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मनुखी अधिकार कमीशन ने सफाई मुलजमान तो सुरक्षा उपकरणों तो बिना सीवरेज सफाई

कार्यक्रम पेश करता जी को सादर नमस्कार। एक ही बहुत ही खूबसूरत अनमोल गीत रफी साहब का सुनना चाहते हैं, अगर संभव हो तो सुना दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फरमाइश भेजने के लिए। फिल्म का नाम है ससुराल 1961, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जी, गीत के बोल, बड़ी प्यारी प्यारी सूरत को, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ जी, चंद्रकला रेवाड़ जी, सुनाइए इनकी फरमाइश को, प्ले कर देते हैं। इसके साथ हम ऐसे कुछ दर्शकों को भी अपने साथ में लेंगे जिन्होंने कहा था कि किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए। सुनाइए कैरेने राम राम जी, कोई भी गीत। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा जी, पूनम गगनेजा जी, विशाल प्रिया जी, दिशानी, निमिता आहूजा जी, सो आइए हम इनको इसी फरमाइश में ले लेते हैं।

आला हरियाणा से दारा पंडित जी, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा जी, गाने के बोल जगिया वे जगिया, फिल्म काला पत्थर से। सो आइए इनकी फरमाइश प्ले कर देते हैं जी, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर पे। और जिन्होंने अभी तक फरमाइश नहीं भेजी है उनसे सभी ने निवेदन है कि 9855101027 पे अपनी फरमाइश भेजिए। गीत फरमाइशी हो जो वो फिल्म का होना चाहिए, और गाने के बोल साफ स्पष्ट लिख के भेजें। और आइए इनकी फरमाइश प्ले कर देते हैं जनाब।

0: सुंदर है जी, इन्होंने लॉट्स ऑफ फरमाइश भेजी हुई हैं, उनमें से हम एक गीत लेते हैं जी। सो आइए 102.7 एफएम रेनबो पे हम इनकी फरमाइश का गीत प्ले कर देते हैं।
1: खेद संसार
0: तो बिल्कुल जी, ये गीत में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जी, जब तक हमें कोई और फरमाइश प्राप्त होती है हम एक गीत प्ले कर देते हैं जी 102.7 FM रेनबो पे।

तो बिल्कुल जी, 102.7 एफएम रेनबो के ऊपर अगली फरमाइश जो प्राप्त हुई है, कह रहे हैं नमस्कार होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, इनकी फरमाइश है जी गीत मेघा रे मत प्रदेश जा बदलते रिश्ते, और गीत है जी एक मेरी सांसों को जो महका रही है, सो आइए इनके हम गीत को प्ले कर देते हैं 102.7 एफएम रेनबो पे आपकी प्यारी फरमाइश।

नमस्कार। वंजरो 2.7 FM रेनबो, एक बार फिर से आपका सभी का इस्तकबाल करता हूं रात के FM रेनबो घड़ी के ऊपर। पूरे 10 बज चुके हैं और कार्यक्रम का आगाज हो चुका है शाम गजल। कहते हैं कि कर रहा था गमे जहां का हिसाब, तुम आज याद बेहिसाब आ गए। और कह रहे थे कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास, दिल को कई कहानियां भी याद सी आकर रह गई। 102.7 FM रेनबो, शाम गजल।

हम तो समझते थे कि हम भूल गए उनको, हम तो समझते थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज, किस बात पे रोना आ गया? और कहते हैं कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। 102.7 FM रेनबो, शाम की गजल।

हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। 102.7 FM रेनबो, शाम ए गजल।

0: 102.7 FM रेनबो कार्यक्रम का आगाज हो चुका है जी। एक प्यार का नगमा है, रात का समय है, 10:30 हो चुके हैं और इसी बीच में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मैं आपका दोस्त आरजे परविंदर। कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।
1: ना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे।

कहते हैं कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर की भी ना चाहो कि दम निकल जाए। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। 102.7 FM रेनबो एक प्यार का नगमा है।

न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी एक मुलाकात की। दिल धड़कने का सबब याद आया, वह तेरी याद थी अब याद आया। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें तो वो मर जाते होंगे। और कहते हैं कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने चाहने चाहने वालों में खो गए।

में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। और कहते हैं कि इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग मुझसे मेरा महबूब समझते होंगे। और तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले ना मुझे पागल कर दो। वन जीरो टू पॉइंट सेवन एफ एम रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, और तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। 102.7 FM रेनबो।

नमस्कार, तुसी सुन रहे सी 102.7 FM रेनबो। मैं थोड़ा मित्र आरजे परविंदर। प्रोग्राम चल रहा सी एक प्यार का नगमा है। अज दी सभा दे साढ़े सारे प्रोग्राम समाप्त होंदे ने। कल सवेरे फिर 5:55 ते होवेगी थोड़े नाल मुलाकात। तद तक लई सानू दिओ इजाजत। कल साढ़े आरजेज ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ।